सुप्रभात, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन शनिवार शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि छे, तदनुसार 27 जून सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांत

0: पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Bharat Taxi is a digital mobility platform based on the principles of cooperation, which gives shape to the concept of Sarthi Hi Malik. Under this model, taxi drivers are not merely service providers, but are also participants and owners of the platform, enabling them to receive the benefits of economic empowerment, social security and ownership. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India-UK ties are moving towards a defining milestone with the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Addressing the business plenary session in London yesterday, Mr. Goyal said that it was heartening to interact with leaders from across sectors, united by a shared belief in the immense opportunities that lie ahead. He also invited businesses across both nations to deepen engagement, accelerate innovation, and invest with greater ambition for shared prosperity as CETA opened new frontiers for growth. In Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude one, both occurring close to the surface, making destruction more severe. The country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. India has launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. External Affairs Ministry said in a statement that as part of the operation, two Indian Air Force C-17 Globemaster aircraft departed for Venezuela yesterday, carrying humanitarian relief supplies and a 41-member rescue team to assist the ongoing relief and rescue efforts. The relief consignment included a self-reliant Indian Medical Task Force, an Indian Army Field Hospital unit with HADR pallets and medicines, 30 tons of relief supplies, 6 tons of medicines and medical equipment, and 2 Bhishma Cube portable hospitals. U.S. Secretary of State Marco Rubio announced a U.S.-mediated framework agreement between Israel and Lebanon aimed at achieving lasting peace and security. The proposed deal includes a ceasefire contingent on Hezbollah halting all attacks and withdrawing from southern Lebanon. Announcing the framework, Rubio described the agreement as the first step toward restoring stability while acknowledging that the path ahead would be challenging but equally vital. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London. After Abu Bakr gave Pakistan an early lead, India staged a remarkable comeback with 7 different goal scorers. Sukhjeet Singh and Harmanpreet Singh scored in the second quarter, while Hardik Singh, Jugraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal added 4 more goals in the third. Dilpreet Singh completed the rout with a goal in the fourth quarter. India will next face England tomorrow. In FIFA World Cup 2026, France defeated Norway 4-1 in Group 1 clash at Boston Stadium in Massachusetts, US. Ousmane Dembele scored a first half hat-trick, helping France to finish at the top of the Group 1. In another Group 1 fixture, Senegal defeated Iraq 5-0 in Toronto. This big win keeps Senegal in contention of reaching last 32 as one of best third-place teams. And that is the end of this news bulletin.

हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आइए आज इस कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त करते हैं भिंडी की खेती के संबंध में।

खेती की बातें सुनने वाले आप सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जोहार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के विषय में। किसान भाई बहनों, भिंडी की खेती कम लागत में शानदार मुनाफा देने वाली सब्जी की फसल है। इसे साल में दो बार यानी गर्मियों में फरवरी मार्च और बारिश में जून जुलाई के महीने में उगाया जा सकता है। 6.0 से 7.0 पीएच मान वाली दोमट मिट्टी भिंडी की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। अंतिम जुताई से पहले प्रति एकड़ खेत में 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद और बेसल डोज यानी 20 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास मिट्टी में अच्छे से मिला लें। किसान भाई बहनों, अच्छी पैदावार के लिए और वायरस से बचाव के लिए हमेशा प्रमाणित और उन्नत किस्मों का ही चयन करें। श्रोताओं, अर्का अनामिका।

अर्का अभय, परभणि क्रांति और वर्षा उपहार, एडवांटा की राधिका और नामधारी की एनए 862 भिंडी की प्रमुख उन्नत किस्में हैं। बारिश के मौसम में भिंडी की खेती के लिए जून का महीना सबसे उपयुक्त है। एक एकड़ खेत के लिए लगभग 2 से 3 किलो बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम या थायरम के घोल से उपचारित अवश्य करें। किसान भाई बहनों, बीजों की बुआई लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 4 से 5 दिन के बाद बीज अंकुरित हो जाते हैं। मौसम और मिट्टी की नमी के अनुसार 3 से 4 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। बुआई के 10 से 12 दिन बाद पहली गुड़ाई करें और कमजोर पौधों को हटा दें। खेत को हमेशा खरपतवार से मुक्त रखें। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में पीला मोजैक वायरस, लीफ कर्ल और थ्रिप्स का खतरा रहता है। इनके प्रकोप से बचने के लिए समय समय पर नीम के तेल का स्प्रे या कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उपयुक्त कीटनाशकों का छिड़काव अवश्य करें। किसान भाइयों, बुआई के लगभग 50 से 60 दिन के बाद भिंडी तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। भिंडी को कोमल रहने पर ही हर 2 से 3 दिन में तोड़ते रहें ताकि बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। किसान भाई बहनों, इसके साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।

भिंडी की खेती इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसी के साथ दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है चिंतन। सद व्यवहार ही सफलता की सीढ़ी है। सुंदर चेहरा 2 मिनट याद रहता है, ज्यादा धन 2 दिन याद रहता है, और हमारा सुंदर व्यवहार लोगों को जिंदगी भर याद रहता है। अच्छा व्यवहार सफलता की सीढ़ी है। तलवार की कीमत धार से होती है, इंसान की कीमत उसके व्यवहार से होती है। किसी के साथ ऐसा भी ना करें कि आपके व्यवहार के कारण किसी की आंख में आंसू आए, किंतु ऐसे सद्व्यवहारू बनिए कि आपकी सहृदयता की याद में लोगों की आंखों में आंसू आ जाएं। जो लोग ऐसी जिंदगी जी लेते हैं, ईश्वर उन्हीं से प्रेम करते हैं। चिंतन अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

संवेत्सरों में देश को समर्पित ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना। अब आइए जगजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। वंदना में आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह और साथी।

जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

0: श्री रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमरीका ने

जल डमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 और 35 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर सुनिएगा जन प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम जरा सुनिए। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता, विषय है स्वच्छता क्यों आवश्यक है। इस विषय पर बताएंगे स्मिता पारीख।

7:20 पर सुनी का कार्यक्रम लोक गीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे निशि प्रसाद की आवाज में कुछ मगही लोक गीत। सात बजकर 7:35 का समय होता है बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि का। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा पन्नालाल भट्टाचार्य की आवाज में श्यामा संगीत। सात बजकर 7:50 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के तहत आज सुनिएगा भेंट वार्ता। विषय होगा किडनी से संबंधित बीमारियां और बचाव। इस विषय पर हमें बताएंगे डॉक्टर प्रभाकर। समय याद रखिए श्रोताओं, सुबह 7:50। आठ बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण होगा।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके ठीक बाद 8:30 बजे सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 8:45 से और 10:20 से। नौ बजे हिंदी में समाचार और 9:05 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन राग देशकर में। दस बजे हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा। 10:10 पर विश्व दर्पण का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप हैं प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब सुबह के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम, जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए।
3: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम जरा सुनिए में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके समक्ष आए हैं एक अलग विषय के साथ, और वो विषय हम सभी से जुड़ा हुआ है, और वो विषय है स्वच्छता से। जी हाँ श्रोताओं, स्वच्छता। ऐसा कहा जाता है, स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो हम अपने काम को बखूबी अंदाज में निभा पाते हैं, और वो हमारे समाज के लिए एक अच्छी बात भी है। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। तो आइए श्रोताओं, उनकी मुलाकात आप सभी से करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्मिता पारीख जी, जो शहर की जानी मानी एक बिजनेस वूमेन है। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं सबसे पहले अपने आज के मेहमान का। नमस्कार महोदया, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
4: नमस्ते
3: स्मिता जी। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि अक्सर हम बातें करते हैं कि यहाँ सफाई नहीं है, वहाँ सफाई नहीं है, रोड के किनारे कचरा गिरा हुआ है, ठीक ठाक तरीके से सरकार काम नहीं कर रही है। तो क्या साफ सफाई केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है, या फिर हम सबों की भी जिम्मेदारी बनती है?
4: नहीं, केवल सरकार की जिम्मेदारी शहर को साफ रखने की नहीं है, हम नागरिकों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी आदतें, हमारे छोटे मोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जो हम अपने शहर को स्वच्छ बना सके।
3: जी, जैसा कि आपने कहा कि एक छोटा प्रयास भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तो एक आम नागरिक को क्या क्या करना चाहिए?
4: बहुत आसान बातें हैं, अपने घर और आसपास में सफाई रखें, कचरा डस्टबिन में डालें, गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों अलग अलग बिन्स में जमा करें, और प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग करें। प्लास्टिक ऐसी चीज है जो कभी नाश नहीं होती है, और वो नाश नहीं होती है तो इसके चलते हमारे शहर की गंदगी को बरकरार रखने में प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। तो इस प्लास्टिक का आपको एकदम ही उपयोग बंद करना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर गंदगी

0: गंदगी नहीं फैलानी चाहिए।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि हमें सार्वजनिक जगहों पर गंदगी ना फैलाएं, लेकिन कई बार अक्सर हम यह भी देखते हैं कि लोग सड़कों पर जहां तहां थूकते हैं या फिर जो पान गुटखा खाते हैं, अक्सर उनके छींटे आपको कई जगह दीवारों पर या फिर सड़कों पर नजर आते हैं, तो लोगों के इस बर्ताव का क्या असर पड़ता है?
0: ये बुरी आदतें हैं, जो पान गुटखा खाना और रोड के ऊपर थूकना, ये बहुत बुरी आदतें हैं। इससे सिर्फ गंदगी नहीं बढ़ती है परंतु बीमारियां भी फैलती है। हम इस आदतों को तुरंत बंद करना चाहिए और अपने सेल्फ अनुशासन को बनाए रखना चाहिए और इसके लिए दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए।
1: जी, चलिए अब बातें करते हैं खाने पीने की। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि जमशेदपुर शहर में लोग खाने पीने के शौकीन रहते हैं, अगर हम बात करें स्ट्रीट फूड वेंडर्स की, तो लोग अक्सर किसी न किसी आपको फूड स्टॉल पर खाते पीते दिख जाएंगे, तो क्या स्ट्रीट फूड वेंडर्स की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए? आपका क्या सोचना है इस बारे में?
0: मैं स्ट्रीट फूड वेंडर को ये बोलूंगी, क्योंकि मैं भी एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी रेस्टोरेंट, मेरी जगह सफाईदार होगी, मेरा खाना बनेगा सफाई से, मेरे वेटर्स वगैरह सफाईदार होंगे, तो वो ग्राहकों को आकर्षित करता है। इसी तरह आप भी अपने कोई भी सामान बेचते हो तो खाना को ढक के रखना चाहिए, साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, बर्तन भी सफाईदार होना चाहिए और खास करके कचरा को डस्टबिन में रखना चाहिए और अपनी खुद की सफाई वो रखना बहुत जरूरी है। जिस हाथों से आप खाना बनाते हो उस हाथों से आप पैसा न लें, आप हाथ धो के हाथ साफ करके ही पैसा लेना चाहिए। तो ये छोटे छोटे बदलाव जो अगर आप करोगे तो आप अपना बिजनेस भी ज्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे।
1: जी, जैसे कि बातें हो गई स्ट्रीट फूड वेंडर्स की, तो अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कई जगह सड़कों पर या फिर कई जगह दुकानों में फल सब्जी विक्रेता भी काम करते हैं या फिर उनकी भी दुकानें लगती हैं, और उनके द्वारा जो चीजें प्रयोग या फिर जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं वो एक या दो दिन बाद खराब होने वाली भी होती हैं, तो फिर फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगी कि ताकि वो भी स्वच्छता रखने में अपनी भूमिका निभाएं?
0: जी, इनके लिए एक छोटा सा संदेश है, अपने फल और सब्जी को बहुत आकर्षक तरीके से उनको रखना चाहिए, जो कि लोग आकर्षित होके अपने पास आए और वो अपनी आजू बाजू की जगह है उसमें स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, जैसे कि छिलका या कोई भी ऐसी चीजें बगल में ही रखनी नहीं चाहिए, और साफ सुथरे ताजे फल बेचे और आसपास में सफाई रखे, तो स्वच्छता ही स्वास्थ्य की पहचान है।
1: जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की पहचान है। अब ये सारी बातें हो गई हम सब नागरिकों की, अगर हम बात सरकार की करें तो सरकार की भूमिका स्वच्छता रखने में कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा है, और मैं तो वैसा बोलूंगी कि कई जगह पर हम लोग ऐसे देख भी रहे हैं कि कचरा कई दिनों से उठता नहीं है। एक प्रोसेस होना चाहिए जिस प्रोसेस से शहर का साफ सुफी हो जाए, कचरे का निबंधन करना चाहिए, कचरे की सफाई और कचरा उठाओ वो सब एकदम रेगुलरली एक प्रोसेस की तरह होना चाहिए, नहीं कि कहीं जगह पर आप बहुत बड़ा ढेर देख लिया, किसी ने कंप्लेन किया और आप जाके वहाँ सफाई करते हो, वैसा नहीं होना चाहिए। सफाई कर्मचारी की निगरानी और नियमों का पालन कराना वो एक बहुत अनुशासन की बात है, जो सरकार की तरफ से अगर नागरिकों के ऊपर में ये नियमों का पालन और जुर्माना जो करके जागरूकता का अभियान चलाए, तो मैं नहीं समझती हूँ कि आज हम लोग बाहर देश में जाते हैं तो वहाँ नागरिक ऑटोमेटिकली इतने अनुशासित होते हैं कि कोई भी चीजें आजू बाजू फेंकते नहीं है। क्यों? वैसा अनुशासन हमारे देश में नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा सरकार का भी रोल आता है।
1: जी, जैसे कि हम सभी नागरिकों का भी जिम्मेदारी है तो सरकार की भी अपनी एक भूमिका है, और हम दोनों को अपनी भूमिका का निर्वहन भली भांति करना चाहिए। अब हम बातें करते हैं त्योहारों की, क्योंकि हमारा भारत देश त्योहारों का देश भी कहा जाता है, जहां अक्सर हर एक दो महीने के अंतराल पर या फिर एक ही महीने में कई सारे त्योहार पड़ते हैं। अलग अलग धर्म संप्रदाय की बात की जाए या फिर अलग अलग प्रदेशों की बात की जाए, तो हमारा भारत देश त्योहारों का देश बना हुआ है। त्योहार मनाने के बाद जो हमें गंदगी का अंबार कई जगह देखने को मिलता है, तो उस बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी या फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि हम त्योहार को भली भांति मनाएं भी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका भी निभाएं।
0: आपने बहुत सही कहा कि त्योहारों के समय एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हम त्योहार को घर पे तो मनाते हैं, परंतु त्योहार सड़कों के ऊपर भी मनाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि सड़कों पर जाके कोई भी त्योहार का, या जैसे एग्जांपल है पूजा, दुर्गा पूजा, तो पूजा के समय में बहुत अधिक त्योहारों का आदमी लोग का आना जाना रहता है। और इस समय में सरकार की तरफ से विशेष सफाई अभियान भी होना जरूरी है, और साथ साथ नागरिकों का सेल्फ अनुशासन होना बहुत जरूरी है। और त्योहारों के समय में हम अगर अपने को अनुशासित रखे तो हम मना पाएंगे स्वच्छ त्योहार और सुरक्षित शहर।
1: बिल्कुल, हम मना पाएंगे स्वच्छ त्योहार और सुरक्षित शहर। और अंत में हमारे शहरवासियों के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं तो सभी से यह कहूंगी कि मैं संकल्प लेती हूं कि मैं कचरा इधर उधर नहीं फैलाऊंगी, डस्टबिन का उपयोग करूंगी और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखेंगे, और दूसरे को भी प्रेरित करेंगे कि आप भी ये सब अनुशासित बनके ये सारी चारों चीजों को आप हमेशा जिम्मेदार बनके आप जिम्मेदारी अपनी निभाइए। तो स्वस्थ शहर, स्वस्थ जीवन, ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्वच्छ शहर और स्वस्थ जीवन ये हम सभी की जिम्मेदारी है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ शहर और स्वस्थ जीवन ये हम सभी की जिम्मेदारी है, इसी विषय पर खास बातचीत। और आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी स्मिता पारिक जी। उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आप सभी को आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और आप सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक होते हुए अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश अवश्य करेंगे, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य है। श्रोताओं, कार्यक्रम जरा सुनिए कि आज का सफर बस यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक मुझे यानी विवेक आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: जरा सुनिए,
3: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए।
3: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
2: जरा सुनिए,
4: जन प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम जरा सुनिए अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक गीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आनंद लेते हैं मगही लोक गीतों का। कलाकार हैं निशी प्रसाद।

निशी प्रसाद की आवाज़ में आप सुन रहे थे मगही लोकगीत। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:35 और 24 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं पन्नालाल भट्टाचार्य की आवाज़ में श्यामा संगीत।

0: पन्नालाल भट्टाचार्य की आवाज़ में आप सुन रहे थे श्यामा संगीत। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं भेंटवार्ता। विषय है किडनी से संबंधित बीमारियां और बचाव। इस विषय पर हमें बता रहे हैं डॉक्टर प्रभाकर। इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे किडनी से संबंधित बीमारियों के बारे में। इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रभाकर, जो टाटा मेन हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये जानकारी दीजिए कि आमतौर पर किडनी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं?
2: आमतौर पे किडनी से संबंधित बीमारियां होती है दो प्रकार की होती है। सबसे पहला जो बीमारी होती है, इसमें या तो पेशाब के रास्ते से प्रोटीन जा रहा हो, ये मेनली बच्चों में भी पाया जाता है, बूढ़ों में भी और एडल्ट में, तीनों एज ग्रुप में होता है। इसमें मुख्य लक्षण जो होते हैं शरीर में सूजन आना होता है।
1: अच्छा।
2: दूसरा जो मेन बीमारी है उसमें ये होता है कि जिसमें कि जो किडनी का जितना गुर्दा को जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करता है। उसके कारण क्या होता है, किडनी का जैसा कि हम जानते हैं कि मेन फंक्शन है वो है ब्लड को प्यूरिफाई करना।
1: अच्छा।
2: तो अगर मान लीजिए किसी मरीज को ऑलरेडी पुराना डायबिटीज चल रहा हो, ब्लड प्रेशर चल रहा हो, या फिर कभी कभी जो दर्द निरोधक दवाओं का जो सेवन काफी लंबे समय से करते हैं।
1: अच्छा।
2: ऐसे या फिर कोई रासायनिक, जैसे आजकल के खाने पीने में मिलावट, इतनी मिलावट होती है उसमें काफी रासायनिक पदार्थ यूज करते हैं, तो ये लोग क्या है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है किडनी पे असर करते हैं। ऐसे केसेस में जो किडनी पे असर होता है वो काफी लंबे समय के बाद मालूम चलता है, क्योंकि किडनी का फंक्शन जब तक कि 90% से ज्यादा खराब नहीं होती तब तक उसके लक्षण नहीं आते हैं।
1: बाहरी तौर पर कुछ दिखता नहीं है।
2: इसमें मुख्यतः जो लक्षण आते हैं वो जैसे थकावट होना, भूख अच्छे से नहीं लगना, खाने की रुचि नहीं होना, या फिर खाते समय उल्टी का आभास होना, या पेशाब के रास्ते में पस जा रहा हो या खून जा रहा हो, ऐसा लक्षण हो तो तुरंत किडनी रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए।
1: और ये मान लीजिए कोई नजरअंदाज कर रहा हो इससे तो कितना खतरनाक हो सकता है?
2: काफी खतरनाक हो सकता है। तो अगर किसी में किडनी में जो बीमारियां होती है वो मिलने दो प्रकार की होती है, एक को एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं, दूसरे को क्रोनिक रीनल फेलियर बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: एक्यूट रीनल फेलियर में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किडनी पूरी तरह से रिकवर हो सकती है, लेकिन जो अगर किसी को क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया है तो उसमें वापस आने की संभावना काफी कम होती है। इसलिए अगर आप

0: मेनली जो इम्प्यूरिटीज होता है वो किडनी से प्यूरिफाई होता है। ऐसे मरीजों में हम लोग प्रोटीन थोड़ा कम लेने बोलते हैं, फॉस्फोरस जो कि मेनली किडनी से बाहर निकलता है, यूरिक एसिड जो बाहर निकलता है, पोटेशियम, तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें पोटेशियम काफी ज्यादा हो, फॉस्फोरस काफी ज्यादा हो, ऐसे खाद्य पदार्थों को हम लोग कम लेने बोलते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन कम हो रहा हो बार बार, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन आता है मार्केट में, उसको इरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, और फिर आयरन, आयरन और इरिथ्रोपोइटिन देते हैं जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। तो हीमोग्लोबिन की समस्या दवाओं से और खाद्य पदार्थ में मॉडिफिकेशन से हम लोग बहुत हद तक उसके प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लिया आपका ब्लड प्रेशर काफी कंट्रोल नहीं रहता है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जरूरी है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता तो डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है। तो इन खाद्य पदार्थों में कंट्रोल के साथ साथ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है।
1: एक आम आदमी किडनी में इस तरह की बीमारियां न हो इसके लिए क्या उपाय कर सकता है?
0: आम आदमी के लिए अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो रेगुलर उनको नियमित रूप से दवा ले, दवा का सेवन करें, उनको कंट्रोल में रखें, और या फिर आपके परिवार में किसी को किडनी की शिकायत हो, या तो उम्र आपका 40 साल से ऊपर हो, ऐसे लोगों को हमेशा साल में एक बार किडनी संबंधी जो टेस्ट होते हैं वो कराते रहना चाहिए। इसको हम लोग स्क्रीनिंग बोलते हैं, जिससे कि अगर बीमारी पहले से पता चल जाए या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो उसको काफी हद तक हम लोग दवा से कंट्रोल करके उसके प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि किडनी में अगर किसी तरह की खराबी है तो उसका लक्षण जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वो दिखने लगता है। किसी भी तरह का लक्षण यदि आपके शरीर में दिख रहा हो तो निश्चित तौर पर आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, और अच्छा यह होगा कि आप किसी किडनी रोग विशेषज्ञ से मिले तो आपका इलाज ज्यादा अच्छी तरह से होगा। डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

किडनी से संबंधित बीमारियां और बचाव, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर प्रभाकर, इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का

0: विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक
1: के साथ। मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारम्भ करेंगे। आरम्भ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में

0: ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में 8 से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
4: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
5: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
6: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
8: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में

0: हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए। राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम? राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से प्राकृतिक खेती कर धरती बचाने की अपील की। कल दिल्ली में आयोजित होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज एक दिवसीय झारखंड दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। रांची सहित पूरे झारखंड में मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, यातायात में बदलाव। राज्य के कई जिलों में आज आंधी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, 3 जुलाई तक बारिश की संभावना। और बोकारो में 18 अगस्त से राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन, देश भर के ओलंपियन और शीर्ष तीरंदाज होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान भाई बहनों से जमीन के एक छोटे हिस्से में भी प्राकृतिक खेती करने की अपील की है। उत्तराखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने खेत बचाओ अभियान, धरती बचाने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अपनी धरती को भी बचाएगी।
2: सारे मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि इस बार बारिश कम होगी, ऐसी फसल जिसमें पानी ज्यादा लगता है कृपया करके इस बार उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी फसल लगाएं जिसमें कम पानी लगे और कम बारिश में भी वो सरसब्ज हो सके, वहां फसल हम बचा सकें।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए शामिल होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले आज एक दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री अठावले रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में दोपहर को आयोजित एक विशेष सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को रांची के मोराबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में मीडिया से संवाद करेंगे। आगामी 30 जून को साहिबगंज के ऐतिहासिक भोगनाडीह में हुल दिवस का आयोजन पारंपरिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। वीर शहीद सिधो कान्हो के वंशज और सिधो कान्हो हुल फाउंडेशन के अध्यक्ष मंडल मुर्मू ने इसकी जानकारी दी।
3: प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं भोगनाडीह में हुल दिवस। इन वर्ष पे हम लोग हुल दिवस पूरे धूमधाम से मनाना चाहते हैं और आज मैंने साहिबगंज जिले के एसडीओ साहब ने हमने एक आवेदन दिया है हुल दिवस मनाने के संदर्भ में। अतु मंजी वैसी की बिना पहले हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज हमने एसडीओ साहब को चिट्ठी दिया है।
1: झारखंड भाजपा ने साहिबगंज के भोगनाडीह में 30 जून को हुल दिवस के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए

0: 9 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया है। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि चांद भैरव और फूलो झानो सहित जनजातीय वीरों के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा ने कहा कि हुल दिवस पर महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान का व्यापक स्तर पर स्मरण किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड
1: हमारे
0: पूरी तरह अटूट है और वर्ष 2029 तक जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। देवघर में कल बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के विभिन्न राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
1: हमारे हेमंत सोरेन जी और गठबंधन के जो बाकी कांग्रेस है, राजद है, माले, इन्होंने लिखकर 2029 तक के लिए माननीय राज्यपाल जी के पास में सपा हस्ताक्षर है और सदन के नेता हेमंत जी हैं, उनको सदन का संपूर्ण विश्वास प्राप्त है और केवल हमारे पक्ष के नहीं, जो हमारे विपक्ष के भी बहुत सारे लोग हैं वो भी सरकार की नीतियों के कारण हमारे साथ हैं।
0: रांची सहित पूरे झारखंड में मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और राज्य भर में 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, गिरडी, लोहरदगा और हजारीबाग सहित संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रांची जिला प्रशासन ने अखाड़ाधारियों से निर्धारित मार्ग और समय का पालन करने तथा जुलूस में असामाजिक तत्वों और खतरनाक प्रदर्शन को रोकने की अपील की है। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि शहर में मुहर्रम जुलूस की सुरक्षा के लिए 6,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे और पूरे जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरों तथा कंट्रोल रूम से की जाएगी। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान बिजली का करंट लगने से 9 लोग झुलस गए हैं। यह हादसा भीखना पंचायत के कुसुमडीह गांव में हुआ। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से जुलूस के दौरान बिजली के तारों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज रांची, हजारीबाग समेत 20 जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश के बीच कहीं कहीं वज्रपात और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 3 जुलाई तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने सेकेंड NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी बोकारो जिला तीरंदाजी संघ को सौंपी है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 18 से 27 अगस्त तक मोहन कुमार मंगलम खेल स्टेडियम बोकारो में आयोजित होगी। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष डॉ. लंबोदर महतो ने बताया कि इस आयोजन में देश भर से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तीरंदाज, ओलंपियन, राष्ट्रीय कोष तथा तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।
2: जिला तीरंदाजी संघ निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य, शानदार और ऐतिहासिक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये इतने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक इसका आयोजन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में होना।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और उस पर कार्रवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड में वज्रपात ने ली 6 की जान, दर्जन भर झुलसे। प्रभात खबर ने लिखा है, 177 करोड़ की लागत से बनेगी 10 लेन की स्मार्ट सड़क। दैनिक भास्कर ने लिखा है, माध्यमिक आचार्य के 7 विषयों का रिजल्ट जारी।

315 सफल। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिल्ली से रांची आ रहे विमान में आई तकनीकी खराबी, प्लेन के भीतर 3 घंटे फंसे रहे यात्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से प्राकृतिक खेती कर धरती बचाने की अपील की। कल दिल्ली में आयोजित होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज एक दिवसीय झारखंड दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। रांची सहित पूरे झारखंड में मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, यातायात में बदलाव। राज्य के कई जिलों में आज आंधी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, 3 जुलाई तक बारिश की संभावना। और बोकारो में 18 अगस्त से राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन, देश भर में ओलंपियन और शीर्ष तीरंदाज होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, एक रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो, लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान हैं, चलते रहेंगे।

प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम सुनिएगा बस थोड़ी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जीवन में कई ऐसे अवसर या परिस्थितियां आती हैं जब हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में हमारा मनोबल और आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। छोटी छोटी परेशानियों से हमें अपने सपने को खोना नहीं बल्कि उन्हें पूरा करना चाहिए।

दोस्तों, सच ये है कि आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम जीवन की हर चुनौतियों को पार कर सकते हैं। मन की दृढ़ता और सकारात्मक सोच हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसलिए आशावादी बने रहें, जीत पक्की है। मन को मजबूत बनाएं, समय के साथ आगे बढ़ें।

0: आपने जिन फिल्मों की गाने सुने वो थे तारे जमी पर और बॉर्डर। आवाजें थी शंकर महादेवन और रूप कुमार राठौर की। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी और जावेद अख्तर ने। संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय और अनु मलिक ने। और अब कार्यक्रम फिल्म संगीत से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 सैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताज शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। भारत का कल मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20

0: क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व विजेता उरुग्वे ग्रुप एच के अंतिम मुकाबले में स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बायना ने स्पेन के लिए विजयी गोल दागा। ग्रुप एच के अन्य मुकाबले में काबो वेर्दे सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर राउंड 32 में पहुंच गया है। इससे पहले ग्रुप आई के मैच में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।
2: जलवायु उपशमन और अनुकूलन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। हम स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधार कर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना, जैसे कि भोजन, पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकती है।
3: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
5: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
6: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

यीशु रंजना सुनने वाली आप सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त पूनम श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, शनिवार विशेष सुरंजना में आज युगल गान। आज सुरंजना कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार आरडी बर्मन पर। आज सुरंजना में हम बातें करते हैं पंचमदा की। दोस्तों, सन 1949 में आज ही के दिन लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में संगीत देने वाले संगीतकार आरडी बर्मन का जन्म हुआ था। आरडी बर्मन मशहूर संगीतकार एसडी बर्मन यानी सचिन देव बर्मन के बेटे थे। राहुल देव बर्मन का को बचपन से ही संगीत का बेहद शौक था। महज 9 साल के जब वे थे तभी उन्होंने अपना पहला गाना कंपोज किया था।

सीता और गीता, इस फिल्म का गीत आपने सुना। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें थीं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, आरडी बर्मन को पंचमदा का नाम अभिनेता अशोक कुमार ने दिया था। वो जब भी किसी धुन को गुनगुनाते थे तो वो अक्सर प शब्द का इस्तेमाल करते थे। उनकी यही बात अशोक कुमार ने नोटिस कर ली। सरगम में प पांचवें स्थान पर आता है, इसलिए उन्हें पंचम नाम दिया। वे उन्हें पंचमदा कहकर पुकारने लगे और धीरे धीरे ये नाम इतना फेमस हो गया कि दुनिया भर में सभी लोग इन्हें पंचमदा के नाम से ही पुकारने लगे।

0: अच्छा
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी
0: तो क्या हुआ
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी
0: चल पगली।

बुड्ढा मिल गया इस फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत था आरडी बर्मन का। दोस्तों, पंचमदा की मुलाकात आशा भोसले से गाने के सिलसिले में हुई थी। दोनों ने मिलकर एक साथ कई गाने गाए। बाद में पंचमदा ने आशा भोसले से शादी कर ली।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में सितमगर फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। 200 साल 1988 में आरडी बर्मन को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद लंदन में उनका इलाज कराया गया। इलाज के दौरान आरडी ने कई धुनें बनाई। पंचम दा के द्वारा 1942 लव स्टोरी में आखिरी बार संगीत कंपोज किया गया। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे। आइए चलते चलते इसी फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं।

1942 लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा था और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। श्रोताओं, संगीतकार आर डी बर्मन पर केंद्रित कार्यक्रम सुरंजना अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम सुरंजना से हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत बस थोड़ी ही देर में।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हेलो डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर,
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
5: 870-001-4242।
6: प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आइए श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन राग देशकर में।

विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन अभी आप सुन रहे थे राग देशकर्मी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। 10:10
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में 2 बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबू वर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबू वर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं

0: Saudi Arabia at Houston Stadium in United States. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी, मृतकों की संख्या 920 हुई। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और महासागर दृष्टिकोण तथा विकासशील देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार बताया है। 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने कहा कि सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत बनाने तथा हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों की व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
0: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। विश्व दर्पण के लिए मृगनयनी पांडे।
1: परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र

0: का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन होने पर इसके गंभीर परिणामों का पता चलेगा। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल-फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि ईरान माकूल जवाब देने के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्लाह को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इजराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इस शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह के दौरान 963 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 672 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये वृद्धि मुख्य रूप से सोने के भंडार में वृद्धि होने से आई है। भारत में सोने का भंडार 4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 107 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर रहा। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बायना ने स्पेन के लिए विजयी गोल दागा। ग्रुप एच के अन्य मुकाबले में काबो वेर्दे सऊदी अरब के साथ गोल रहे ड्रॉ खेलकर अगले राउंड में पहुंच गया। इससे पहले ग्रुप आई में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर रहा। नॉर्वे 6 अंक के साथ अगले राउंड में पहुंच गया। सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से कल मुलाकात की। श्री प्रधान ने बताया कि चर्चा शिक्षकों की प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी। मृतकों की संख्या 920 हुई। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही

विश्व दर्पण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में पाप फिल्म का ये गीत आपने सुना। अमजद इस्लाम अमजद ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था शाही ने। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और फिल्म सिलसिला का ये गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। गीत के बोल जावेद अख्तर की और संगीत है शिव हरी का।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सिलसिला फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ें थी। गीत के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे और संगीत पद किया था शिव हरी ने।

सरगम फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
3: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
3: हेलो डॉक्टर,
5: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
5: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
6: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

शारदा सिन्हा की आवाज़ में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था असद भोपाली ने और संगीतबद्ध किया था राम लक्ष्मण ने। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ें हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म के गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने वाले हैं, अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह

0: में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रोजेक्ट हॉकाई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 में 2 बार का विश्व कप विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। ग्रुप एच में काबो वेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11:05 और 11 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: नमस्कार जमशेदपुर के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा और आपका साथ रहेगा पूरे 55 मिनट तक, तो स्वीकार कीजिए श्वेता का नमस्कार।

27 जून सन 1880 अलाबामा मलिका में एक बालिका का जन्म हुआ। जब वो 19 महीने की हुई तो उसे स्कारलेट फीवर हो गया और फिर वो गूंगी, बहरी और नेत्रहीन बन गई। ये लड़की थी हेलेन केलर, विश्व का 8वां आश्चर्य। उसे बहुत तकलीफ हुई, परेशान हुई, नाराज हुई। नाराज होती थी दुनिया से, भगवान से, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फेंकती थी चीजों को, तोड़ती थी। माता पिता के लिए उसे वश में करना बहुत मुश्किल हो गया था। जब हेलेन केलर 7 साल की थी तो एन सुलिवन, एक अध्यापिका, उसके साथ जुड़ गई। आजीवन वो हेलेन केलर के साथ रही। जब एन सुलिवन की मृत्यु 1922 में हुई तब तक वो हेलेन केलर की रक्षा कर रही थी, उसको प्रशिक्षण, प्रेम और उत्साह दे रही थी। एक फिल्म बनी है ना भारत में, ब्लैक, जो 2005 में रिलीज हुई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। रानी मुखर्जी हेलेन केलर की भूमिका निभा रही और अमिताभ बच्चन एन सुलिवन की। माना कि वो महिला थीं और अमिताभ बच्चन यहाँ पर पुरुष, पर भूमिका वही और परिणाम भी वही। हेलेन केलर के जीवन में एन सुलिवन के आने के बाद परिवर्तन आने लगे। एन सुलिवन ने हेलेन केलर को फिंगर लैंग्वेज सिखाए, कैसे हाथ रखकर वो जान सकती थीं कि ये शब्द क्या है। सबसे पहला शब्द था डॉल यानी गुड़िया और फिर था वाटर। धीरे धीरे करके हेलेन केलर की प्रज्ञा विकसित होने लगी, वो पढ़ाई करने लगी, ब्रेल भाषा सीखी, उन्होंने ब्रेल में सुधार भी किया, टाइपराइटर जानने लगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज में उन्हें प्रवेश भी मिल गया। इसी कॉलेज से उन्होंने बीए में टॉप किया। उसी साल 1904 में हेलेन केलर ने एक किताब लिख डाली अपनी जीवनी पर, जो प्रसिद्ध हुई और आज भी बहुत प्रसिद्ध है। लिखने का अभ्यास किया, 14 किताबें लिख डाली, 475 निबंध लिखे, गांधी जी पर भी लिखा। वे बच्चों, महिलाओं और मजदूरों के लिए काम भी करने लगी, खासकर अंधे बच्चों के लिए। 39 देशों का भ्रमण भी उन्होंने किया। अंधे और बहरे लोगों के कल्याण के लिए वो बड़े बड़े नेताओं से मिली। महान नेता हेलेन केलर के साथी बने मार्क ट्वेन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, रूजवेल्ट, कैनेडी। जवाहरलाल नेहरू ने से भी वो मिली 1955 में, जब वो भारत आई। वो जिनसे भी बात करती थी उनके गले पर उंगली रखकर और होंठों पर उंगली रखकर ये जान लेती थी कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया, उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला। 1953 में नोबेल प्राइज के लिए उन्हें नामांकित भी किया गया, उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। वो आशावादी थीं, कहती थीं दूसरों को खुश रखने में ही खुशी मिलती है। उन्होंने समानता, प्रेम, प्रगति, उत्साह और एक देश में क्या परिवर्तन होने चाहिए, सामान्य मानव के लिए उन्होंने अनुसंधान किया। हेलेन केलर 88 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर

चली गईं। उनका मुख्य रूप से एक ही संदेश था, प्रेम करो, दूसरों के लिए जियो। दिव्यांग हो तो आप में दिव्यता भी है। कभी अपने आप को कमजोर मत मानो, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। भगवान कुछ देता है तो कुछ लेता भी है, कुछ लेता है तो देता भी ज्यादा है। यही विश्वास लेकर हेलेन केलर चली। विश्व का इतिहास जब लिखा जाता है तो हम हेलेन केलर को नहीं भूल सकते। हेलेन केलर हमेशा अमर रहेंगी, प्रेरणा की स्रोत रहेंगी और आशा का दीपक जलाती रहेंगी। उन्हें शत शत नमन।

ब्लैक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी गायत्री अय्यर की। गाने के बोल लिखे प्रसून जोशी ने और धुन बनाई मोंटी शर्मा ने। श्रोताओं, जब भी पंजाब के इतिहास की बात होगी तो शेर पंजाब महाराणा रणजीत सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। उन्होंने एक मजबूत और शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। 1807 में उन्होंने कुतुबुद्दीन को हराया और कसूर पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय सैनिक थे। उन्होंने अपने पिता के साथ सिर्फ 10 साल की उम्र में पहली लड़ाई लड़ी। उन्हें बचपन में चेचक हो गया और इसी बीमारी ने उनकी एक आंख ले ली थी। दशकों के शासन के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया।

केसरी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी बी प्राक की। इस गाने को लिखा मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सजाया आर्को ने। श्रोताओं, सैम मानेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे। वो फील्ड मार्शल का पद धारण करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। उनकी सक्रिय सैन्य करियर द्वितीय विश्व युद्ध से आरंभ होकर 4 दशकों और 5 युद्धों तक विस्तृत रहा। सैम मानेकशॉ की कमान के तहत भारतीय सेनाओं ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्हें भारत के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मानेकशॉ की 94 वर्ष की आयु में 27 जून 2008 की सुबह सैन्य अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि उनके आखिरी

शब्द थे, मैं ठीक हूं। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म सहम बहादुर मानिक शॉ के जीवन पर आधारित है। फिल्म में विक्की कौशल ने मानिक शॉ की भूमिका निभाई है। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गाना।

गुलजार का लिखा हुआ गाना भी आप सुन रहे थे सैम बहादुर फिल्म से। आवाज थी शंकर महादेवन की। इस गाने को संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन की जयंती है। इन्हें पंचम के नाम से भी जाना जाता है। राहुल देव बर्मन ने अपनी संगीतबद्ध की हुई 18 फिल्मों में आवाज भी दी थी। भूत बंगला और प्यार का मौसम फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया। संगीत की दुनिया में क्रांति लाने वाले राहुल देव बर्मन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी तैयार की गई धुनों ने कई पीढ़ियों को झूमने पर मजबूर कर दिया।

जमाने को दिखाना है, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं शैलेंद्र सिंह और साथियों की। गाने के बोल लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अंतराल में जाने से पहले हम बात कर रहे थे संगीतकार राहुल देव बर्मन की। राहुल देव बर्मन कंघी कप प्लेट की आवाज की इनकी धुन भी बना लेते थे। उन्होंने ऐसी ऐसी धुनें बनाई जो आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती हैं। राहुल देव बर्मन ने 300 से ज्यादा फिल्मों में गाने बनाए। उनकी करियर जर्नी 60 के दशक से शुरू हुई। 70 से 80 के दशक में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया।

अभी आप सुन रहे थे आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गाने की बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई राहुल देव बर्मन ने। श्रोताओं, राहुल देव बर्मन ने उस्ताद अली अकबर खान, पंडित समता प्रसाद और सलील चौधरी से संगीत सीखा। राहुल देव बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में फिल्म 16 साल से की, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म 1966 में आई तीसरी मंजिल थी। इसके गाने लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। इसके बाद उन्होंने पड़ोसन, प्रेम पुजारी, यादों की बारात, दीवार, खेल खेल में, वारंट, आंधी, खुशबू, धर्म करम और शोले जैसी कई हिट फिल्मों में संगीत दिया।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे खेल खेल में इस फिल्म का गाना। गाने के बोल लिखे गुलशन बावरा ने और धुन बनाई राहुल देव बर्मन ने।

अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज से हिंदी फिल्म संगीत में विशेष पहचान बनाने वाले नितिन मुकेश ने अपनी यादगार गीतों से श्रोताओं का दिल जीता है। वो अपनी मखमली आवाज और रोमांटिक गानों के साथ साथ भजनों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

तेजाब फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी नितिन मुकेश, शब्बीर कुमार और अलका याग्निक की। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गाने के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार,

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स

0: की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। दिन के 12:05:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत।

महबूब से मुलाकात की उम्मीद दिल को सुकून देती है। मुलाकात सिर्फ एक सुखद एहसास ही नहीं बल्कि कई तरह के दर्द में मरहम भी है। इश्क में जुदाई के दिनों में मुलाकात उम्मीद भी है तो रिश्तों के संतुलन में एक जरूरत भी। पेश है मुलाकात शीर्षक पर चुनिंदा गाने। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई।

इत्तेफाक से ही सही, मगर मुलाकात हो गई। ढूंढ रहे थे हम जिन्हें, आखिर उनसे बात हो गई। देखते ही देखते उनको जाने कहाँ खो गए हम। बस यूं समझो प्यार की शुरुआत हो गई।

हसीना से यूं मुलाकात हो गई।

शीर्षक गीत कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। चलते चलते आपको बताते चलें, कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम है महबूब की मेहंदी, खानदान, पराया धन और अजनबी। इन गानों के लिए आवाजें थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इन गानों को लिखा आनंद बख्शी और नक्श लालपुरी ने। संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम और आर डी बर्मन ने। अब शीर्षक गीत कार्यक्रम से श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 होने वाले हैं। प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुनने वाली सभी बहनों को नमस्कार जोहार। बहनों, उम्मीद है कि आप इस वीकेंड में बूंदों की रिमझिम का आनंद लेंगे अपने परिवार के साथ, अपने सखियों के साथ। बहनों, हम जब भी महिलाओं

0: की शक्ति, उनके मजबूती, उनके व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं, तभी संभव है जब हर महिला आत्मनिर्भरता के सुख को समझ पाएंगी। भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने की कहानी हम महिलाओं के सशक्तिकरण की कहानी से मिलती जुलती है। लघु उद्योग में भाग लेकर महिलाएं नवाचार और अपनी सामर्थ्य के आधार पर आत्मनिर्भर होने का सपना साकार कर सकती हैं। MSME एक ऐसी योजना है जिससे देश का निर्माण संभव है और इसके द्वारा युवा प्रतिभाओं और महिलाओं का भी हम विकास कर सकते हैं। यह स्वप्न सीधे तौर पे महिलाओं और युवा उद्यमी से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस अवधारणा पर चलेंगे और अगर लघु उद्योग पर बल देंगे तो यह साबित हो सकता है कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। हम महिलाएं अग्रणी भूमिका में भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रहे परिवर्तन को देख रही हैं। कुछ वर्ष पहले तक कार्यबल में 5 में से 1 महिला की भागीदारी थी, पर अब 5 में से 2 महिलाएं सक्रिय हैं। इससे भी अधिक उत्साहजनक बात यह है कि इनमें से अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जो नौकरी नहीं करना चाहती बल्कि रोजगार सृजन करना चाहती हैं, और यह MSME की योजना के द्वारा ही और सरल और संभव होता जा रहा है। यह एक बड़ा ही सुखद बदलाव है। इन्हें तो अब लखपति दीदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गाँव में भी ऐसी महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक है जो इस योजना में जुड़कर सालाना लाखों रुपए कमा रही हैं। महिलाओं की सक्रियता और उनकी ऊर्जा और सामर्थ्य के द्वारा ही बाजार में आज मजबूती और विविधता देखी जा रही है, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़ी ही नहीं होती बल्कि मजबूत भी होती है। MSME जैसे योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व कौशल भी विकसित किया जा रहा है और महिलाएं समाज को वापस कुछ देने के बारे में सोच रही हैं। यह भारत के समाज में एक सुखद परिवर्तन है। जहां महिलाओं के प्रति संकुचित सोच थी, वो अब बदल रही है। बहनों, ये कहना गलत नहीं होगा कि उद्यमिता अब कोई विकल्प नहीं है बल्कि ये एक मुख्य पेशा है, और महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए बनता अनुकूल वातावरण भी दिखाई देता है। ये सुनते हैं एक भेंट वार्ता, विषय बढ़ती उम्र में अपने खान पान का रखें ध्यान। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं देविका बोधक।
1: नमस्कार, मेरा नाम देविका बोधक, मैं एक न्यूट्रिशनल एडवाइजर हूँ। मैं खान पान के ऊपर, पोषक तत्व के ऊपर जानकारी देती हूँ, साथ ही साथ मैं स्किन को कैसे ठीक रखे उसके ऊपर भी जानकारी देती हूँ।
0: देविका जी, हम ये तो जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में भोजन का क्या महत्व है, पर ये जो उम्र की बात है भोजन से जुड़ी हुई, इस विषय को आप कैसे समझाएंगी?
1: कि जैसा हम खाते हैं वैसे ही हम होते हैं। अगर हम अच्छा खाना खाएं, खाना तो अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा खाना क्या है। अच्छा खाना मतलब वो संतुलित आहार जिसमें हमें सारे पोषक तत्व मिले, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके।
0: तो चूंकि ये जो अंगना कार्यक्रम है वो बहनों का कार्यक्रम है, तो महिलाओं के लिए एक अच्छा आहार या सामान्य आहार आपके दृष्टिकोण में क्या होगा?
1: तो बहुत अच्छा सवाल है। महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं को अपने आहार पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं देखती हूँ कि हम लोग सारा दिन मॉर्निंग से रात तक दूसरों के बारे में सोचते हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे इन-लॉज और हमारे बच्चों के बारे में हम लोग सोचते हैं, लेकिन हम अपने पे ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन बहनों, एक बात हम ये सोचना हमें चाहिए कि अगर हम उस घर में ठीक नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हम दूसरों का ध्यान कैसे रखेंगे? तो मैं सभी महिलाओं को बोलूंगी कि पहले तो सुबह उठ के आप ध्यान दें कि आपको क्या बनाना है, और थोड़ी थोड़ी अंतराल में हमें कुछ ना कुछ भोजन लेते रहना चाहिए। ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं करना चाहिए, हाइड्रेट रखना चाहिए, पानी भरपूर पीना चाहिए। अब पानी हम कितना अच्छे से पीते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? हमारा यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उससे पता चलता है कि हमारा बॉडी हाइड्रेटेड है। दूसरी बात है, हमको जो फूड का गैप है वो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में, अंतराल में हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए।

0: ना कुछ का मतलब ये कि पोषक तत्व के अनुसार हमें खाना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग कुछ भी मंचिंग कर लिए, कभी दो बिस्किट खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कुछ मिक्सचर खा लिया, वो नहीं। जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को जरूरत है उस हिसाब से हमें खाना चाहिए। और स्पेशली महिलाओं के लिए हम लोगों को विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे बॉडी में कैल्शियम, आयरन का संतुलन ठीक रहे, उस तरह का भोजन हमें करना चाहिए।
1: मैम, अभी जो आपने बताया ड्राई फ्रूट्स के बारे में, कई बार हमारी महिला बहनों को ऐसा लगता है कि कीमती होता है वो आहार जिसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, जबकि उनको शायद जानकारी का अभाव होता है कि उनके रसोई घर में या उनके बगीचे में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू से संपन्न होती हैं। तो कुछ ऐसे तत्व बताइए जो कि सस्ते भी हैं, बहुत महंगे नहीं हैं, और उनसे वो पौष्टिक तत्व प्राप्त कर सकती हैं।
0: देखिए, ड्राई फ्रूट्स जो है, जैसे आप बोल रही हैं, अच्छा ड्राई फ्रूट्स, अच्छा पोषक तत्व के लिए थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। हम महिलाएं क्या है, अपने साड़ी, ज्वेलरी, मेकअप में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा रहेंगे तभी हम कुछ भी पहनेंगे तो अच्छे दिखेंगे। दूसरी बात है, जो घर में हमारा किचन है और उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट है, हमारा मसाला का डिब्बा जो है, मसाले के डिब्बे को अगर हम लोग ठीक से बना ले तो उस मसाले में इतने सारे पोषक तत्व तो मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, जो हम खाने से ले सकते हैं। हम लोग घर में जो सब्जियां बनाते हैं वो सब्जी में, वो ग्रीन वेजिटेबल्स में, वो फ्रूट्स में ही सारा न्यूट्रिएंट्स बसा हुआ है, तो हमें उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए बजाय कि महंगे साड़ी और ज्वेलरी में, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।
1: ये बड़ी ही अच्छी बात कही आपने कि स्वास्थ्य ही आभूषण है। हम महिलाएं सुंदर दिखना चाहती हैं, गहने पहनना चाहती हैं, पर अगर स्वस्थ रहेंगी तो वो सुंदरता भी अपनी जगह काफी मायने रखता है। 50 वर्ष की आयु में मुझे लगता है जब हम बहनें, महिलाएं मेनोपॉज की समस्या से भी गुजर रही होती हैं और गर्भावस्था का जो समय होता है, ये सारी चीजें जो महिलाओं के सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट होता है, तो इस वक्त आप किस तरह के आहार की सलाह देंगे?
0: देखिए, मेनोपॉज का जो टाइम होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ का टाइम होता है हमारे जीवन में, तो उस समय हमें कैल्शियम और विटामिन डी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारे बोन्स स्ट्रांग रहे। और उसमें कैल्शियम जो है हमको दूध, छेना, पनीर ये सब से मिल जाता है। विटामिन डी भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि जब कैल्शियम हमारे बॉडी में अच्छा होगा तो हमारा बोन्स जो है वो फॉर्मेशन अच्छा होगा, वो बोन्स स्ट्रांग होंगे। और इसमें भी कैल्शियम विटामिन डी के साथ K2 भी हमें लेना चाहिए ताकि हम कमजोर ना हो। मैक्सिमम टाइम में मेनोपॉज के समय क्या होता है, बोन्स हमारे कमजोर हो जाते हैं, तो इसीलिए कैल्शियम वाले चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें।
1: और गर्भावस्था में भी आहार का रूप ऐसा ही होना चाहिए?
0: नहीं, गर्भावस्था में आप एक जन को और पाल रहे हैं, कोई एक नया जीवन हम ला रहे हैं, तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स फैक्टर को ख्याल रखते हुए हमको ज्यादा चाहिए, क्योंकि दो जीवन उसमें पल रहा है, एक माँ का और एक आने वाले संतान का। इसीलिए उसमें आयरन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन। जो प्रोटीन जो है वो ग्रोथ में मदद करता है, आयरन, फॉलिक एसिड हमारे हीमोग्लोबिन को ठीक लेवल को ठीक रखता है, फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन में मदद करता है, कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सब चीज दोनों के लिए चाहिए।
1: हम बात कर रहे थे कि बढ़ती उम्र के साथ भी हमारा भोजन थोड़ा बहुत बदलना चाहिए।
0: देखिए, बढ़ती उम्र में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो हमारे खाने में, हमारे भोजन में फाइबर युक्त खाना परोसना चाहिए, और फाइबर हमें तरह तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट से हमें मिल जाता है, तो हमारे खाने में फाइबर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहेंस करने के लिए।
1: बढ़ती उम्र में कई बार महिलाओं को वेट बढ़ने की भी समस्या होती है और काफी भयभीत रहती हैं, वो चाहती हैं कि वो दुबली पतली ही दिखे और आकर्षण जो है शरीर का वो बना रहे, तो ऐसे में क्या सलाह देंगी भोजन को दृष्टिकोण में रखते हुए?
0: ये तो हर महिला का यही है कि हम सुंदर दिखे, वेट ना बढ़े, तो वेट बढ़ना नहीं बढ़ना सारा चीज हमारे ही हाथ में है, वो हमारा घर में जो हम थाली पड़ोस रहे उसी में सब कुछ बसा हुआ है। हमको संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें हमारे प्लेट में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, गुड फैट चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए, प्री एंड प्रोबायोटिक चाहिए, और वो संतुलित आहार होना चाहिए। और वेट ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं इसीलिए बढ़ रहा है, जब हमारे खाने में गैप बहुत होता है तो उससे भी हमारा बॉडी वेट गेन करने लगता है। तो

0: मतलब यही निकला कि हमको थोड़ी थोड़ी अंतराल में 2.5 से 3 घंटे में खाना खाना चाहिए, उसमें गुड फैट चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल वाला चीज़ नहीं। आप मसाले सब कुछ खाइए, लेकिन तेल जो है उसमें आपका हाथ कंट्रोल होना चाहिए।
1: फलों के सेवन के संबंध में आप क्या सलाह देंगी?
0: फलों के सेवन के संबंध में यही है कि पहले हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग सुनते थे कि आफ्टर लंच हमें एक फल खाना चाहिए, लेकिन अभी के जो समय है, अभी साइंस बहुत चेंज हो गया है, बहुत कुछ हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं लंच से 1-1.5 घंटे पहले आपको एक फ्रूट लेना चाहिए, और लंच के 1-1.5 घंटे बाद ही फिर आप 2 घंटे बाद ही फ्रूट ले, क्योंकि जो लंच होता है वो हैवी होता है और उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अगर हम फल और लंच जो एक साथ लेंगे तो फल का जो पोषक तत्व वो हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि फल बहुत इजीली बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और जो मेन कोर्स हमारा फूड होता है वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अगर हम लंच के 1-1.5 घंटे पहले कोई फ्रूट ले ले मिड मॉर्निंग में, तो हमारा फल का जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी को बहुत अच्छे से मिल जाता है।
1: भोजन के साथ सलाद लेना भी सही रहेगा क्या महिलाओं के लिए?
0: 100% सही है। आप अपने जो प्लेट है, हमारे घर में जो हमारा लंच प्लेट है, उसको मैं क्या करती हूँ, मैं पर्सनली उसको डिवाइड कर लेती हूँ
1: जी।
0: उसको एक पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट रखती हूँ, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, जो भी कोई एक चीज मैं रखती हूँ, साथ में वेजिटेबल्स रखती हूँ, एक सब्जी रहता है, एक प्रोटीन सोर्स रहता है, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, एक सलाद रहता है और एक दही रहता है। दही घर वाला दही जो हम लोग घर में बनाते हैं, मार्केट से खरीदा हुआ दही नहीं, मिठाई के दुकान से खरीदा हुआ दही नहीं, उसमें बहुत सारा स्वीटनर्स ऐड होते हैं। तो दही जो हम लेते हैं वो प्री एंड प्रोबायोटिक का काम करता है और उसमें कुछ चीनी वगैरह हम लोग नहीं डालते हैं।
1: बढ़ती उम्र की एक और जो बात ध्यान में आ रही है कि त्वचा में थोड़ा ढीलापन आता है, झुर्रियाँ भी आती हैं और वो एक असर नजर आता है, महिलाएं उसको भी लेकर काफी कंसर्न होती हैं, तो उस विषय में भोजन कुछ हेल्प कर सकता है क्या?
0: एकदम हेल्प कर सकता है। हमारा प्रोटीन जो है हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जो हमारे पैर के नाखून से सर के बाल तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं एक एग्जाम्पल दे के बताना चाहूंगी, जैसे हम एक घर बनाते हैं, एक घर बनाते हैं तो 2 ईंटों के बीच में हम लोग कॉन्क्रीट लगाते हैं, क्यों? ताकि हमारा वो दीवार जो है, वो घर जो है मजबूत है, तो प्रोटीन उसी कॉन्क्रीट का काम करता है। तो प्रोटीन जो है जब हम लेते हैं कोलाजन फॉर्मेशन में मदद करता है, तो हमारा स्किन का जो कोलाजन है वो अच्छा रहता है, और साथ में स्किन के लिए हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाना बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे स्किन को अच्छा रखेगा, फ्री रेडिकल्स से लड़ेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे कहाँ से? जो साइट्रस फ्लेवर के फ्रूट होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, ये सब से हमें साइट्रस फ्लेवर मिल जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
1: महिलाओं के ऊपर ही परिवार के बहुत सारी चीजों का दायित्व होता है, तो अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, किस तरह का आहार वो दें, उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे?
0: देखिए, बुजुर्ग को भी प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि उनका मसल स्ट्रांग रहे। कैल्शियम अच्छा चाहिए, क्योंकि उनके बोन्स स्ट्रांग रहना चाहिए। फाइबर होना चाहिए उनके भोजन में, ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने लगते हैं। तो ये चीज जो है बहुत जरूरी है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड भी उनको चाहिए, ताकि उनको ओवरऑल सब कुछ मिल जाए और वो खाने के प्लेट से ही मिलेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमको बहुत महंगी महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, हम घर में जो बनाते हैं उसी में सब कुछ है।
1: मुझे लगता है कि आप जो कह रही हैं, अगर हमारी बहनें इस पर ध्यान दें तो डॉक्टर के पास जाने की और दवा खाने की जरूरत रहेगी ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ हम थोड़ा सजग रहें तो वो समस्या से हम दूर रहेंगे,
0: एकदम दूर रहेंगे। हमको स्वस्थ रहना है, हमको लाइफ टाइम मेडिसिन के ऊपर नहीं रहना है। देखिए, बीमार हम पड़ते हैं, हाँ, सीजनल हो गया, बीमार हम पड़ते हैं, और बीमारी आज के डेट में हर घर में आप नॉक कीजिए, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, अभी यूरिक एसिड है, तो ये सब बीमारी हो रहा है। क्यों? हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें बहुत चेंजेस हो गया। अभी हम लोग जब आते हैं कहीं से वीकेंड में, आप देखिए हर रेस्टोरेंट में वेटिंग रहता है। पहले हम लोग क्या करते थे, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कुछ स्पेशल डे हम लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं। अब भी लोग क्या करते हैं, वीकेंड सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं एक चीज समझ नहीं पाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ बोलती हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। हम लोग पूरा वीक मेहनत कर रहे हैं वेल्थ के लिए और हेल्थ को इन्वेस्ट करके वेल्थ ले रहे हैं, और वही वेल्थ से हम लोग जाके जंक फूड सब खरीद के खा के अपने हेल्थ में क्या कर रहे हैं। बाद में क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे डॉक्टर्स के क्लिनिक में, वही वेल्थ को फिर खर्च करेंगे और हेल्थ को गेन करेंगे। लेकिन एक बार हेल्थ चला जाएगा तो गेन होना बहुत टफ होता है।
1: तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने भोजन पर ही ज्यादा ध्यान दें। अभी तक तो हमने ये बात किया कि क्या क्या भोजन लेना चाहिए बढ़ती उम्र में, एक बार यह भी जानना चाहूंगी कि समय क्या होना चाहिए, कब खाना है और कब नहीं खाना है, क्योंकि आजकल ये भी कंसेप्ट मैं सुन रही हूँ कि देर रात का भोजन सही नहीं है, पहले ही खा लेने से बेहतर है, नाश्ते का समय क्या होना चाहिए, तो एक बार उस पर भी हमें सलाह दें।
0: बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट, खासकर मैं महिलाओं को ज्यादा जोर दूंगी इस बारे में। सुबह हम जब उठते हैं उसके बाद विद इन ढाई घंटे, दो ढाई घंटे के अंदर हमारा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, और गैप जो अंतराल जो होना है हर ढाई तीन घंटे में हमें खाना चाहिए। एक हमको एक रूटीन बना लेना होगा, जैसे मैं अपने में फॉलो करती हूँ कि हर ढाई तीन घंटे में ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद मिड मॉर्निंग में कभी कुछ खाने का मन करता ही है, एक फ्रूट ले लिया, फिर उसके थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो जाता है। तो हमको समय के अंतराल को ध्यान में रखते हुए खाना चाहिए, और रात को डिनर जल्दी कर लेना चाहिए, कम से कम सोने से ढाई तीन घंटे पहले हम कर ले तो अच्छा है। एक इम्पोर्टेंट चीज और है, हम लोग खाने के बारे में बात कर रहे हैं, पोषक तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे घर में जो बर्तन यूज होते हैं
1: जी,
0: वो बर्तन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हम लोग आजकल स्मार्ट चॉइस में चले गए ना, क्विक, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया ज्यादा फॉलो करते हैं। तो बर्तन जो है, मैं अपने घर में जो करती हूँ, मैं एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं बनाती हूँ, मैं कुकर यूज नहीं करती हूँ, मैं नॉनस्टिक यूज नहीं करती हूँ, मैं अपने बता रही हूँ मेरे घर में जो करती हूँ। मेरे घर में अगर दाल बन रहा है, जो हर घर में डेली बनता है, मैं दाल को एक घंटे आधा घंटे पहले भिंगा देती हूँ, स्पेशली चना दाल जो है उसको मैं भिंगा देती हूँ, और फिर मैं उसको डेगची में ही स्टील के बर्तन में ही उबालती हूँ, ठीक है। लोग, मैं देखती हूँ एग भी बॉयल करते हैं, एग आलू बॉयल करते हैं कुकर में, अगर अंडा करी बनाना है आप 10 मिनट टाइम दीजिए ना, आपका एक ऐसे पतीले में बॉयल हो जाएगा। मैं खुद करती हूँ, मैं जो करती हूँ मैं वही बोलती हूँ। जो हम खाना बनाते हैं उसमें हम एक चीज प्रयोग करते हैं, वो है तेल। ऑयल के बिना खाना बनता नहीं, बहुतों को ऐसा लगता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। मैं तो बिना ऑयल का ऑयल फ्री खाना भी बनाती हूँ, और ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ऑयल से टेस्ट नहीं होता, वो एक माध्यम है भोजन बनाने का। तो ऑयल कंजम्पशन हम जितना कम करें उतने अच्छा हमारे हेल्थ के लिए है।
1: तो यानी कि जो भोजन पकाने की विधि है और जो भोजन पकाने का बर्तन है, सारी चीजें अपना अपना रोल प्ले करती हैं, और इसको ध्यान में बहुत लोग नहीं ही रखते हैं, तो इस पर भी हमारी बहनों को थोड़ा ध्यान देना।
0: और एक चीज मैं बताऊंगी, फ्लेम, किस फ्लेम में हम खाना बना रहे हैं। हम लोग को बहुत जल्दी होता है ना, जब हम बहुत हाई फ्लेम में खाना बनाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन जो है वो जल जाता है, ठीक है
1: जी।
0: तो इसीलिए बहुत हाई फ्लेम में नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम में मैं खाना बनाती हूँ।
1: तो बहनों, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और वैसा ही होगा हमारा तन। ये बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमें मिली है देविका बोधक जी के द्वारा, विषय बढ़ती उम्र के साथ खान पान का ध्यान रखना है जरूरी। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने हमें बुलाया, याद किया।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, विषय बढ़ती उम्र में अपने खान पान का रखे ध्यान। इस विषय पर हमसे बात कर रही थी देविका बोधक।

बहनों, अभी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बहनों, जब भी बात सुंदरता की होती है तो अक्सर हम उसे सिर्फ चेहरे की सुंदरता समझते हैं। त्वचा का असमान रंग, यानी कहीं वो काला है और कहीं वो साफ है, ये हमेशा हम महिलाओं के लिए एक मुश्किल वाली बात हो जाती है। इन समस्या में सबसे पहले अगर किसी अंग की बात करें तो वो है घुटने और कोहनियों का कालापन। ये दोनों अंग अक्सर काले दिखाई देते हैं। कपड़ों या टेबल या मेज जिस पर हम काम करती हैं उसके साथ बार बार रगड़ खाने से यहाँ की जो त्वचा होती है वो मोटी हो जाती है और इसी कारण उसका रंग भी थोड़ा दब जाता है और वहाँ की जो स्किन है वो थोड़ी सी खुरदरी हो जाती है। यूं तो स्वाभाविक रूप से हमारे कोहनियों की त्वचा थोड़ी मोटी होती है, पर उपेक्षा के कारण भी कई बार वो संवेदनशील हो जाती है और भी अधिक गहरे रंग की दिखती है। अक्सर हम अपने दैनिक दिनचर्या में यहाँ की त्वचा की देखभाल को नजरअंदाज करते हैं, पर बैंगनी किरणें जो सूर्य की रोशनी से निकलती हैं वो हमारे शरीर के खुले हिस्से जैसे घुटने और कोहनियों को और भी अधिक काला कर देती हैं। पर बहनों, अगर हम कुछ घरेलू उपचार करें तो यहाँ की त्वचा को चमकदार बना सकते हैं और उसे साफ भी रख सकते हैं। वहाँ की त्वचा के मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए हफ्ते में 2 बार वहाँ हल्के स्क्रब से सफाई करें। रूखी त्वचा के कालेपन का एक प्रमुख कारण है कि वहाँ जल की भी कमी होती है, तो प्राकृतिक तेल और मक्खन से भरपूर मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम से भी इस त्वचा को हाइड्रेटेड रखें। जिद्दी दाग धब्बों से निपटने के लिए ऐसे भी उपचार का चुनाव हम कर सकते हैं जिसमें विटामिन सी हो और मुलेठी हो। बहनों, कोई भी मौसम हो, धूप से बचाव तो बेहद जरूरी है, इसलिए जब भी बाहर निकलें तो सनस्क्रीन लगाना ना भूलें और इसे सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि घुटने और कोहनियों पर भी लगाएं। हल्दी और शहद तो ऐसे

0: इसी के साथ कार्यक्रम अंगना से अपनी सखी कल्याणी को दीजिए विदा। हम मिलेंगे फिर और करेंगे गपशप। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, मुस्कुराती रहें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। आपको याद दिला दें, दोपहर 2:30 से हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 3:15 का समय होगा झारखंड के लोकगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा मुंडारी गीत। कलाकार होंगे काके मुंडा।

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 से सुनेगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है।

0: उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फॉरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. During the visit, Prime Minister Modi will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Meanwhile, Seychelles has backed India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Ford said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. U.S. Secretary of State Mark

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। विश्व एमएसएमई दिवस आज। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी उद्यमियों को दी शुभकामनाएं। कहा, सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की। रामगढ़ सड़क हादसा में 8 लोगों की मौत पर प्रशासन गंभीर। डीसी और एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। एनएचएआई अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों पर विस्तार से की चर्चा। महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर साहेबगंज में प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं ने लिया नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प। और रांची में 3 दिवसीय झारखंड फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। 67 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। राज्य की संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं की दिखेगी झलक। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व एमएसएमई दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश को आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे ले जाने वाले सभी उद्यमियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुति क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाना है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत रोजगार जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर गरीब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गिरडी के भंडारीडीह की रहने वाली रजिया इस्लाम का कहना है कि गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलने से जिंदगी आसान हो गई है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।
1: नाम रजिया इस्लाम, कोयला लकड़ी जलाते थे, अब जब से गैस मिला तब से खाना बना के दे देते हैं, टिफिन जल्दी जल्दी करके, अब धुआं से धक्का से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं। घर दिया है, गैस दिया है, अनाज मिलता है, फ्री में खाने पीने की सुविधा है। सरकार को धन्यवाद देते हैं, ये सब कुछ मिल गया।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
2: जब यहाँ के बच्चों का हक, यहाँ के बच्चों का अधिकार को जब छीन रहे हैं, लुटा रही है सरकार, तो मुझे लगता है कि उससे अपने आप को सरकार नहीं बच सकती। हमारे पास आज भी वो सारे दस्तावेज हैं। विधानसभा में भी मैंने विषय को उठाया था कि रिम्स में या झारखंड सरकार में कोई सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
0: इधर भाजपा के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता का सरकार के काम पर विश्वास बढ़ गया है, जिससे भाजपा जानबूझकर राजनीति के तहत खामियां निकाल रही है।
3: हर जिला के सदर हॉस्पिटल हो या रेफर अपने लोगों को भेजकर वहां का खामियां निकालता है, तो मैं डॉक्टर और सीएस को कहा हूं कि आप अपना एकदम मुस्तैदी के साथ रहिए और स्वार्थ को लेकर अगर राजनीतिक मुद्दा अगर बनाता है तो उसको बहिष्कार दीजिए। लोगों को विश्वास बढ़ गया है, आदमी काम करता है, मजदूरी करता है, तो मैं आता हूं तो मिलना चाहिए ना।
0: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी बैठक में राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि कम से कम 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की गई है, ताकि अधिक नागरिक लाभ उठा सकें। इस बैठक में 13 से 19 जुलाई तक चीन का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टूर आयोजित करने और जल्द ही राज्य स्तरीय जॉब फेयर शुरू करने की जानकारी दी गई। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा, संताल परगना में 10% होल्डिंग टैक्स वृद्धि और मापतौल विभाग में निरीक्षकों की कमी पर भी चर्चा हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारलोंग क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु पर जिला प्रशासन ने संवेदना प्रकट की। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रामगढ़ बोकारो की तकनीकी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्घटना के कारणों की बारीकी से आकलन किया गया। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर भी

0: विस्तार से चर्चा की गई। बीसीसीएल अब खदान के गंदे पानी को प्यूरिफायर कर पीने योग्य बनाएगी और इसे कोल नीर के नाम से बॉटलिंग कर बाजार में उतारेगी। इसके लिए पुटकी बिलहरी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बीसीसीएल के पहले कोल नीर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोयला खदानों से निकलने वाले माइन वाटर को अत्याधुनिक आरओ तकनीकी से शुद्ध कर पानी पीने योग्य बनाया जाएगा।
1: उस ये जल को सेलिंग करके यहाँ बनेगा, 30 जून तक ये चालू हो जाएगा। इसके लिए जो ये सारे यहाँ हो रहे हैं उस तरह का एक प्रथम कार्य पूरे बीसीसीएल में है, बल्कि प्रैक्टिकली पूरे सियाल का वन ऑफ दी बेस्ट और फर्स्ट प्लांट होगा। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि माइन वाटर का इसे यूटिलाइज किया गया है।
0: हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। बरकट्टा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक अवैध शराब जब्त की। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अवैध अंग्रेजी शराब की खेप की बिहार में तस्करी करने की योजना थी। उत्पाद विभाग आगे की कार्रवाई में जुटी है। सिमडेगा जिले में पुलिस की दोहरी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अवैध गांजा तस्करी के मामले में एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
2: छापामारी गठन के बाद लगातार तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर अज्ञात महिला का शव पहचान ललित देवी के पिता विश्वनाथ बराय साकिन तोलेबीरा जिला सिंधे के रूप में भी है। आरोप मृतिका का मोबाइल चप्पल अभी का फोन बरामद हुआ है। अनुसंधान के क्रम में घटना में संलिप्त आरोपी मोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। मेरा युवा भारत साहेबगंज के तत्वावधान में महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती के अवसर पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित लोगों को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान तथा राष्ट्र प्रेम की भावना से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति अभियान के तहत यूथ क्लब के सदस्य को नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में झारखंड फिल्म महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोपाल पाठक और कुलपति प्रोफेसर जगन्नाथ चेकलिंगम ने किया। साथ ही महोत्सव स्मारिका चित्रपटल का लोकार्पण भी हुआ। देश भर में मिली 84 प्रविष्टियों में से चुनी गई 67 फिल्मों का 3 दिवसीय महोत्सव में प्रदर्शन होगा, जिनमें झारखंड की संस्कृति, प्रकृति और स्थानीय प्रतिभाओं की झलक दिखेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व एमएसएमई दिवस आज। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी उद्यमियों को दी शुभकामनाएं। कहा, सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की। रामगढ़ सड़क हादसा में 8 लोगों की मौत पर प्रशासन गंभीर। डीसी और एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। एनएचएआई अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों पर विस्तार से की चर्चा। महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर साहेबगंज में प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं ने लिया नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प। और रांची में 3 दिवसीय झारखंड फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। 67 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। राज्य की संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं की दिखेगी झलक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
4: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं दिल से फिल्म का गाना। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार ए आर रहमान।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
0: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

अंतराल हुआ पूरा। अब आइए सुनते हैं रांझड़ा फिल्म का गाना। आवाज है सुखविंदर सिंह की, गाने की बोल लिखी इरशाद कामिल ने और तर्ज बनाई ए आर रहमान ने।

जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा, यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है, दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43% सम...

अंतराल हुआ पूरा। अब आइए सुनते हैं सूबेदार फिल्म का गाना। आवाजें हैं आईपी सिंह और श्रेया घोषाल की। गाने के बोल लिखे आईपी सिंह ने और इस गाने को संगीत से सजाया अक्षय और आईपी सिंह ने।

लीजिए अब सुनिए धड़क 2 फिल्म का गाना। आवाजें हैं दर्शन रावल, जनीता गांधी और रोचक कोहली की। गाने की बोल लिखे गुरप्रीत सैनी ने और इस गाने को संगीत से सजाया रोचक कोहली ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं बॉर्डर 2 फिल्म का गाना। आवाजें हैं दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन और सचेत टंडन की। रचना है कौसर मुनीर की और धुन बनाई सचेत परंपरा ने।

बॉर्डर टू फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और फिर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said, contact tracing is reaching more people and that increasing numbers of patients are recovering and returning home. However, he warned that the outbreak is far from over. Back home, the IMD has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezaian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit. Describes Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. US Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसकी भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
5: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
6: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
6: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था

0: को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
1: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम

गुणवत्ता वाले जीआई टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं थलाइवी फिल्म का गाना। आवाज है सैंधवी प्रकाश की, गीतकार हैं शाद कामिल और संगीतकार जीवी प्रकाश कुमार।

0: आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोता इस समय सुन रहे फिल्म संगीत।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आइए अब सुनते हैं राधेश्याम फिल्म का गाना। आवाज़ें हैं मनन भारद्वाज और हरजोत कौर की। गाने के बोल लिखे कुमार ने और तर्ज बनाई मनन भारद्वाज ने।

फिल्म संगीत का अगला गाना ये सुनते हैं पापॉन की आवाज में। फिल्म का नाम है मिशन मजनू। गाने के बोल लिखे AM तुराज ने और धुन बनाई आरको ने।

हम तुम हो, हो तुम हो मेरे लाख जन्म हो तुझ पे खत्म मेरे।

मीत ब्रदर्स के संगीत निर्देशन में कुमार का लिखा हुआ गाना, आवाजें हैं मीत ब्रदर्स, परंपरा टंडन और पीयूष मेहरौलिया की। फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा।

अब आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म का गाना। आवाज है अल्तमश फरीदी की, धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने और इस गाने को लिखा है कौसर मुनीर ने।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 2:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से रिले प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार के तुरंत बाद सुनेगा न्यू इंडिया समाचार।

0: है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी बैठक में राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि कम से कम 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की गई है ताकि अधिक नागरिक लाभ उठा सकें। इस बैठक में 13 से 19 जुलाई तक चीन का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टूर आयोजित करने और जल्द ही राज्य स्तरीय जॉब फेयर शुरू करने की जानकारी दी गई। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा, संथाल परगना में 10% होल्डिंग टैक्स वृद्धि और मापतौल विभाग में निरीक्षकों की कमी पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उपराष्ट्रपति ने उद्यमियों से उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का आग्रह किया। हजारीबाग के ओकनी तालाब के प्रदूषित होने के कारण जल जीव मर रहे हैं। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है। सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार ने तालाब का निरीक्षण करते हुए कहा कि सफाई टीम को ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का निर्देश दिया गया है।
1: लोकल लोग द्वारा यहाँ दिया गया शिकायत कि यहाँ सिंघाड़ा फल लगाया जा रहा था जिसमें कि मछलियाँ का भी हो रहा था पालन, तो मछली काफी संख्या में यहाँ डेड पाए गए हैं। उस चीज को लेकर यहाँ दुर्गंध फैला हुआ था, तो नगर निगम को जैसी शिकायत मिली तो नगर निगम ने यहाँ के देखा, औचक निरीक्षण भी किया। तो साथ ही हम लोग सफाई टीम को डायरेक्शन दिए हैं कि यहाँ

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में भारत की उस सोच को रेखांकित किया गया है जिसके तहत वैश्विक दक्षिण को सुरक्षित, टिकाऊ और समान ऊर्जा भविष्य के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत ऊर्जा व्यवस्था केवल घरेलू नीतियों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी बनती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने को लेकर टाटा स्टील फाउंडेशन नोवामुंडी द्वारा पहल की गई है। टाटा स्टील नोवामुंडी कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के अधिकारी उदय प्रकाश सिंह ने बताया कि यह पहल दिव्यांग बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ेगी। देवघर श्रावणी मेले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने बासुकीनाथ देवघर मार्ग को दुरुस्त और सुविधाजनक बनाने की पहल तेज कर दी है। एनएचएआई के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से बताया गया कि इस मार्ग पर 45 किलोमीटर से अधिक लंबी फोर लेन परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे लाखों श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। धनबाद कोर्ट कैंपस में अधिवक्ता संघ की ओर से आज सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता उदय भट्ट ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कोर्ट कैंपस में शेड का निर्माण कराया गया था। उसी समय से हर वर्ष सुंदर पाठ का आयोजन किया जा रहा है।
1: विगत 2 वर्ष से हम लोग इस कैंपस में सुंदर कांड का आयोजन कर रहे हैं। अमरिंदर कुमार सहाय और सचिव जितेंद्र कुमार उन्हीं के सौजन्य से यहाँ पर कैंपस तैयार हुआ था। उसके बाद से लगातार हम लोग ये करते आ रहे हैं। सुंदर कांड के पाठ के बाद भोग वितरण होगा, खीर और खिचड़ी का व्यवस्था है सभी भक्तों के लिए।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: सबको लगने लगा है कि हमारा देश हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: आइए सुनिए फिल्म संगीत।

अपनाने का भी आग्रह किया। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष भाग, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। में ये सुनते हैं चंद गजलें। फनकार हैं हरिहरन।

हरी हरण की आवाज़ में आप सुन रहे थे चंद गज़लें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेगा झारखंड के लोकगीत।

झारखंड के लोकगीतों के कार्यक्रम में मैं कृष्णा कावेरी आज आपके साथ हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा जोहार। इस कार्यक्रम में आज सुनिए मुंडारी लोकगीत। कलाकार हैं काके मुंडा।

अभी आप सुन रहे थे मुंडारी लोकगीत, कलाकार थे काके मुंडा। श्रोताओं, इसके साथ ही झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ठुमरी। कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी।

आप सुन रहे थे ठुमरी, कलाकार थे पंडित भीमसेन जोशी। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं कुमुद अखौरी देवी।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थी कुमुद अघौरी देवी। श्रोताओं, इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे लोकगीत या आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। राज्य के कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के निर्देश पर गुमला जिला कृषि विभाग द्वारा आज समाहरणालय परिसर से डिजिटल कृषि रथ 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी शुभम प्रिया तीयू ने बताया कि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आज ट्रांसफार्मर लदे वाहन में आग लग गई, जिससे चार ट्रांसफार्मर और गाड़ी जलकर राख हो गई। वहीं वाहन चालक मिथिलेश कुमार ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। हजारीबाग के उकनी तालाब के प्रदूषित होने के कारण जलजीव मर रहे हैं। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है। सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार ने तालाब का निरीक्षण करते हुए कहा कि सफाई टीम को ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का निर्देश दिया गया है। और देवघर श्रावणी मेले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बासुकीनाथ देवघर मार्ग को दुरुस्त और सुविधाजनक बनाने की पहल तेज कर दी है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। में ये सुनते हैं चंद गजलें। फनकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

0: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4:30 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा, लेकिन पहले ये संदेश सुनते हैं।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
0: शाम के 4:31 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारी इसी सभा में रात 8 बजे से भी। प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार मुख्यांश, हम अपने रांची केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे।
1: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि गैर भारतीय या नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति इन्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे तुरंत BLO को लौटा दें। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले आज मीडिया से संवाद करेंगे। उनकी प्रेस वार्ता शाम 6:45 बजे मोराबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में होगी। आज रांची एयरपोर्ट पर श्री अठावले ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड के मजदूरों, महिलाओं, नौजवान, किसान और बेरोजगार के लिए वे काम करेंगे। पलामू व्यवहार न्यायालय परिसर में आज मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सुलह समझौते के आधार पर 55 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं 15,15,580 रुपए पर समझौता हुआ। लोक अदालत में उत्पाद विभाग को 2,57,750 रुपए और वन विभाग को 1,40,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। देवघर में कल से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर आज खूंटी थाना के निकट सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन और पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के निर्देश पर MVI शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों का चालान भी काटा गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: प्रादेशिक समाचार मुख्यांश का प्रसारण हो रहा था आकाशवाणी के रांची केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हुए हैं। युववाणी कार्यक्रम सुनिएगा, लेकिन पहले कुछ संदेश।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब सुनिए युवा साथियों के लिए हमारा कार्यक्रम युववाणी।

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविवर सोहन लाल द्विवेदी जी की इन पंक्तियों के साथ आप सभी युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ FM के 102.4 MHz पर। ये वक्त है कुछ सीखने का, समझने का और जागरूक होने का। मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवावाणी। दोस्तों, कोशिश करने वाले मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं और ये सिद्ध करते दिख रहे हैं आज के युवा। अब तो नौकरी का गणित बदलता दिख रहा है। युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाली राह पर हैं। जी हाँ,

आज हम बात करेंगे स्टार्टअप के बढ़ते हुए क्रेज के बारे में और जानेंगे वर्तमान में कुछ बढ़ती हुई परेशानियों का समाधान। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज जब हम फोन पर कोई ऐप खोलते हैं, चाहे नाश्ता मंगवाना हो, लेक्चर्स के बाद मॉक टेस्ट लगाने हो या घरेलू जरूरत का सामान मंगवाना हो, हम अनजाने में ही सही भारत के एक नए रूप से रूबरू हो रहे होते हैं और यह रूप है स्टार्टअप इंडिया। एक वक्त था जब कॉलेज से निकलते ही युवा एक सुरक्षित नौकरी चाहते थे, पर आज के युवा रिस्क लेने से नहीं डरते। आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों से लेकर देश के छोटे छोटे गांवों कस्बों के युवा भी अपने अनोखे आइडियाज के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। बात करें आईआईटी मद्रास की, तो वहाँ के इंक्यूबेशन सेल ने लगभग 520 स्टार्टअप्स को परिपोषित किया है, जिनकी सामूहिक वैल्यू 71,100 करोड़ रुपए है, जिनमें शामिल है स्पेस टेक, सेमीकंडक्टर, एआई जैसे स्टार्टअप्स। आगे बढ़ने से पहले चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उन सभी युवाओं के नाम जिनकी आंखों की चमक देश का भविष्य उज्जवल करेगी।

आपने अभी सुना 1974 में आई फिल्म इम्तिहान का गीत, जिसके गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अपनी आवाज़ दी किशोर कुमार ने।

जैसा कि हम देख रहे हैं स्टार्टअप्स का क्रेज, क्या आपको नहीं लगता कि आखिर क्यों युवा इस ओर इतने आकर्षित हैं? इसके बहुत से कारण हैं, जैसे असीमित संभावनाएं, नौकरी में सैलरी फिक्स होती है, ग्रोथ की लिमिट होती है और प्रमोशंस में भी समय लगता है, लेकिन स्टार्टअप में अगर आइडिया हिट हो गया तो स्काई इज द लिमिट। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार यानी कि DPIIT का कार्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, आंतरिक व्यापार को सुधारना और व्यापार को आसान बनाना है, यानी कि स्टार्टअप इंडिया पहल को चलाने और आधिकारिक तौर पर मान्यता देने की जिम्मेदारी इसी विभाग की है। 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की कुल संख्या 2,23,000 पार कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप्स को मंजूरी मिली है और इनसे 23,36,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही इनमें करीब 48% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। DPIIT विभाग से सर्टिफिकेट मिलने के बाद सेक्शन ATIAC के तहत 3 साल तक इनकम टैक्स से छूट मिलती है। साथ ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसी योजनाओं के जरिए आसानी से शुरुआती पूंजी मिल जाती है। पेटेंट फाइलिंग में 80% और ट्रेडमार्क में 50% सरकारी छूट मिलती है। बस कुछ नियम मानने होंगे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन को 10 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। साथ ही किसी भी वित्तीय वर्ष में सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक का ना हो। ऐसे ही कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। इन्वेस्ट इंडिया ब्लॉग के मुताबिक भारत आज विश्व का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। यूनिकॉर्न्स ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट वैल्यूएशन $1 अरब यानी 8,400 करोड़ रुपए से अधिक हो। आज भारत के लगभग 131 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता जितना आकर्षक दिखता है उतना है नहीं। स्टार्टअप का मतलब सिर्फ चमचमाता हुआ ऑफिस या फंडिंग मिलना नहीं है, इसके पीछे छिपी है अनगिनत असफलताएं और लगातार मेहनत। अगर आपके पास भी है कोई आइडिया जो किसी की जिंदगी बदल सकता है तो डरिए मत, आगे बढ़िए। ये समय आपका है, ये दौर आपका है। अपने हुनर को पहचानिए, रिस्क लीजिए और देश को आत्मनिर्भर बनने में योगदान दीजिए। आगे बढ़ने से पहले चलिए सुनते हैं एक गीत।

आपने अभी सुना 1971 की फिल्म अंदाज का गीत, जिसके गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और आवाज़ दी किशोर कुमार ने। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, किशोर कुमार की आवाज़ में जब ये गीत कानों में पड़ता है तो सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है। ये प्रसिद्ध गीत जीवन की अनिश्चितता को खूबसूरती से बयां करता है, जैसा कि अगली पंक्तियाँ हैं, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इस कल को सुहाना बनाए रखना और हर सफर को सुरक्षित रखना हमारे हाथ में है, क्योंकि सड़क सुरक्षा बस नियम नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारत सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो 2023 में लगभग 4,80,583 सड़क हादसे हुए, जिसमें 1,72,890 लोगों की मृत्यु और 4,62,825 लोग बुरी तरह घायल हुए। बात सीधी सी है, कानून सिस्टम बना सकता है, समझदारी नहीं। अक्सर हम ये बहाना बना देते हैं कि दो गली आगे ही तो जाना है, हेलमेट की क्या जरूरत है, पर दुर्घटना ये नहीं देखती कि आप दो गली दूर जा रहे हैं या 200 किलोमीटर दूर। वास्तव में सड़क सुरक्षा कानून से अधिक हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी का विषय है। कानून केवल गाइडलाइंस तय कर सकता है, लेकिन सड़कों को सुरक्षित बनाने का असली काम तो हम ही कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्रदेश के युवाओं की इस विषय पर राय।

0: कि सड़क सुरक्षा केवल स्ट्रिक्ट कानून, भारी जुर्माने या पुलिस की चेकिंग तक सीमित नहीं है। कानून हमें एक दायरा दे सकता है, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने का असली समाधान हमारी पर्सनल और सामाजिक जिम्मेदारी में छिपा है। जब तक हम सड़क सुरक्षा को चालान से बचने का तरीका मानने के बजाय जीवन बचाने का माध्यम नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी कानून पूरी तरह इफेक्टिव नहीं हो सकता। सरकार कितने भी स्ट्रिक्ट लॉज बना ले, हर मोड़ पर एक पुलिसकर्मी या कैमरा डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। कानून केवल वायलेशन करने पर पनिशमेंट दे सकता है।
1: मेरा नाम अनिमा नायक है, मुझे आज सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ बताना है। आजकल हम लोग अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें इन सब चीजों के बारे में बात करने का समय ही नहीं मिलता। सड़क सुरक्षा केवल सरकार या ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इसमें हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क पर हर एक जीवन कीमती है और हमारे छोटे से सावधानी बरतने से कई दुर्घटनाएं रुक सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल औसतन लगभग 4.8 से 4.9 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है। इन हादसों में औसतन 1.70 लाख से 1.77 लाख लोगों की जान चली जाती है और लगभग 4.7 लाख लोग घायल होते हैं। मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है और हम लोगों को इस बारे में बात करनी होगी। अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियम सिखाने होंगे। धन्यवाद।
2: मेरा नाम मृणाल कांति झा है और मैं जमशेदपुर का निवासी हूँ। मेरे व्यक्तिगत रूप से यह माना है कि ट्रैफिक रूल्स हम सभी की सुरक्षा के लिए हैं और हर नागरिक को इनका पालन करना चाहिए। हमारे शहर के बेहतरीन व्यवस्था के पीछे झारखंड सरकार और हमारे समझदार पुलिस कर्मियों की भी बहुत बड़ी योगदान है। वे दिन रात मेहनत करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों का सही से पालन हो। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर चेकिंग की जाती है। जो लोग नियमों की अनदेखी करते हैं उनका चालान भी काटा जाता है, ताकि वे भविष्य में सतर्क रहें और दूसरों की जान को जोखिम में न डाले। धन्यवाद।
3: नमस्कार, मैं अभिषेक अंतरिम सिटी कॉलेज बीएड का छात्र हूँ। आजकल बढ़ती सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण रैश ड्राइविंग और अनियंत्रित रूप से जिस प्रकार वाहन सड़क पे लगी रहती है, उससे भी दुर्घटना का कारण बढ़ते जा रहा है। कॉलेज के भी स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टूडेंट्स ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के राइडिंग कर रहे हैं। यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए वे अपनी जान खुद जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में बेहतर है कि नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और ट्रिपल राइडिंग ना करें। सड़क पर अपनी स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी चाहिए और स्पीड लिमिट बरकरार रखनी चाहिए।
4: मेरा नाम करण कुमार है। आजकल के जनरेशन में व्हीकल हमारे जीवन का एक मूल आधार बन चुका है, जिसके बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता जा रहा है। जिस तरह से वाहन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है और इसके बिना हमारा काम नहीं हो पाता है, उसी के साथ साथ हमें इसके प्रति अपना सेफ्टी को भी बरतना चाहिए। गाड़ी चलाना तो सबको आता है, लेकिन रोड सेफ्टी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आजकल के यूथ का कितना सारा एक्सीडेंटल न्यूज सामने आता है, बस लापरवाही की वजह से हो रहा है। लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उन्हें सेफ्टी के बारे में पता नहीं है, रोड सेफ्टी का रूल्स नहीं पता है।
5: मेरा नाम रुद्राक्ष गर्ग है और मैं नोएडा।
6: आइए जानते हैं दूसरे शहरों के युवाओं की इस विषय पर राय।
5: मेरा नाम रुद्राक्ष गर्ग है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। जैसे कि हमें पता ही है, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, हमें कभी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करने चाहिए, ना हमें कभी बिना सीट बेल्ट या फिर बिना हेलमेट के बाइक या गाड़ी चलानी चाहिए। हमें हर रूल का फॉलो करना चाहिए, बिकॉज हमारी जान हमारे लिए सेफ रखनी चाहिए हमें, और जो आगे लोग होते हैं उनकी भी जान हमें सेफ रखनी होती है। ये हमारा काम है, बिकॉज गाड़ी हम चला रहे हैं, बाइक हम चला रहे हैं, ये हमें जरूरी है, हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है।
7: मेरा नाम ओम है और मैं चेन्नई में रहता हूँ।
8: ट्रैफिक रूल्स तो ऐसा है कि अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी बचा रहे हैं। आप अगर समझो ओवर स्पीडिंग कर रहे हो और अगर आप गलती से फिसल गए, गाड़ी आपकी फिसल गई, तो आप तो गिरोगे, साथ में आपके आगे जो नॉर्मली चला रहा हो या जो रास्ते पे चल रहा हो उसको लग जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारी गलती की वजह से दूसरों को सहना पड़ता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि देखो, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए। दूसरा, आप जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो कि हेलमेट पहनना, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं एक गली दो गली दूरी तो जा रहा हूँ, इसमें क्या हेलमेट पहनना। कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो, ये नहीं है कि भाई कुछ आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो क्या है, आप जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है।
9: मेरा नाम राहुल है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। बाइक चलाते वक्त हेलमेट और कार में सीट बेल्ट जरूर पहनने चाहिए। स्पीड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। रोड क्रॉस करते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग

0: का इस्तेमाल करना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स को भी फॉलो करना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव करना बहुत खतरनाक और कानूनन भी गलत होता है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। अगर सब लोग रोड सेफ्टी के रूल्स फॉलो करें तो एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे और सड़कें सबके लिए ज़्यादा सेफ बन जाएगी।
1: मेरा मानना है कि हम युवा ही बदलाव ला सकते हैं, पर कई ऐसे मामले हैं जहां युवा भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनमें से ही एक है करियर। हर युवा लाइफ में सही दिशा चाहता है, उसके लिए करियर काउंसलिंग अच्छा तरीका है। एक काउंसलर जब आपसे बात करते हैं तो वो आपकी योग्यता, रुचि और व्यक्तित्व को समझते हैं। वो आपको बताते हैं कि अगर आपको तथ्य बोलना पसंद है तो जरूरी नहीं है कि आप वकालत ही करें, डिजिटल मार्केटिंग, PR या मेरी तरह रेडियो में भी आ सकते हैं। अब वक्त है समसामयिक खबरों का। फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से पराजित कर नॉकआउट चरण में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। स्पेन की ओर से एलेक्स बायना ने निर्णायक गोल किया। इस जीत के साथ स्पेन अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहा, जबकि उरुग्वे का अभियान यहीं समाप्त हो गया। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड पर 5-1 की प्रभावशाली जीत दर्ज करते हुए ग्रुप जी में शीर्ष स्थान हासिल किया। लियांड्रो ट्रोसार्ड ने 2 गोल किए, जबकि केविन डीब्रूने और रोमेलो लुकाकू ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जीत के बाद बेल्जियम ने नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। इसी के साथ युवावाणी कार्यक्रम से अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही शाम को और करेंगे नए विषयों पर बातें। तब तक के लिए जागरूक रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ आगे के कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।

युवा साथियों के लिए थी आज की युववाणी। प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्रमिक साथियों के लिए हमारा कार्यक्रम कल कारखाने।

दोस्तों, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना आज की बहुत बड़ी जरूरत है। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में ठोस बदलाव लाने होंगे, जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगे बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक सार्थक और संतुलित बनाएंगे। और दोस्तों, हमारा जीवन तभी सार्थक होगा जब हम खुशहाल जीवन जिएं, और खुशहाल जीवन गीत संगीत और मनोरंजन के बिना कहां संभव है। तो श्रोताओं, आज हम हाजिर हैं कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंशु, और आज हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जो हमारे देश की असली ताकत है।

दोस्तों, जब हम आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं तो उस सपने को हकीकत में बदलने वाली सबसे मजबूत रीढ़ हमारे MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं। चलिए आज के इस शो में इन्हीं छोटे उद्योगों की बड़ी कहानी सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के छोटे छोटे कमरों और कस्बों में चलने वाले ये उद्योग ही आत्मनिर्भर भारत के असली साइलेंट हीरोज हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं करते, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। दोस्तों, हमारे MSMEs भारत देश की रीढ़ हैं। ये देश की GDP का लगभग एक तिहाई हिस्सा संभालते हैं। ये रोजगार का साधन बनते हैं। खेती के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां यही सेक्टर पैदा करता है। लोकल से ग्लोबल तक का सफर का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। आपके घर के पास बनने वाला सामान आज विदेशों

क्षेत्रों में भारत का नाम चमका रहा है। महिला सशक्तिकरण में भी इनका योगदान काफी सराहनीय है। आज ग्रामीण इलाकों में लाखों महिलाएं इन उद्योगों के दम पर आज आत्मनिर्भर बनी हैं। दोस्तों, हुनर और हौसले की इस कहानी में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम कल कारखाने FM के 102.4 MHz पर, और आइए अब सुनते हैं ये गाना।

सैनिक फिल्म से लिए गए इस खूबसूरत से गीत को भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी कुमार सानू और साधना सरगम की। गीत लिखा था समीर ने और संगीत निर्देशन नदीम।

0: इस संदेश के बाद आइए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं जानकारी औद्योगिक प्रगति राष्ट्रीय विकास की धुरी विषय पर। जानकारी दे रहे हैं नागेंद्र शर्मा। तो ये सुनते हैं ये वार्ता।
1: उद्योग की प्रगति आधुनिक जीवन का पैमाना है। विज्ञान के अद्यतन देन को धरातल पर औद्योगिकरण के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है। उद्योग को आधुनिक जीवन से हटाकर देखने पर हमारा जीवन आधुनिक तरह कर बिल्कुल जनजातीय समाज का रूप ले लेगा, जहां मानव जीवन प्रकृति के अनुकंपा पर आश्रित हो जाता है। आप एक बारगी अपना ध्यान अतीत में ले जाएं, जब समाज उद्योगों के विकास से रहित था। क्या उस समय आज की तरह आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध रही होंगी? वह कैसा समय रहा होगा जब मानव पूरी तरह प्रकृति की अनुकंपा पर निर्भर रहा हो? प्रकृति में हस्तक्षेप करने की बात कितनी अकल्पनीय रही होगी उस वक्त। आज के समय और अतीत के जीवन स्तर का फर्क विकास की वजह से है, जिसे औद्योगिक विकास की संज्ञा दी गई है। औद्योगिक विकास

0: आज हमारे समय में प्रत्येक क्षेत्र के विकास से आबद्ध है, चाहे वह कृषि क्षेत्र का हो, हमारी सुरक्षा से जुड़ा हो, पूंजी निर्माण से संबंधित हो, तकनीकी विकास का हो या शहरीकरण का हो, यह सबसे सापेक्ष रूप से संबद्ध है। भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान कृषि पर आधारित रही है। यह पिछड़ी और परंपरागत रूप में है। इसमें उत्पादन और लागत का उचित अनुपात नहीं है। इसमें सुधार के लिए हमें ट्रैक्टर, पंप सेट आदि कृषि यंत्रों की आवश्यकता है। उपज को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड आदि दवाओं की जरूरत पड़ती है। ये सभी औद्योगिक उत्पाद हैं। बिना औद्योगिक विकास के इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं संभव है। कृषि उपज यथा जूट, काटन, गन्ना जैसे कच्चे उत्पाद से फ्लेक्स, टेक्सटाइल, चीनी आदि बनाने के लिए औद्योगिकरण चाहिए। देश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं के मद्देनजर यह आवश्यक है। आंकड़े बताते हैं कि देश में जिस गति से औद्योगिकरण हुआ है, उसी अनुपात में विकास दर हासिल किया गया है। 1960 से 1980 के बीच प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय विकास दर 1.4% सालाना रही, जबकि वर्ष 1980 से 1990 के दशक में यह 3.25% प्रतिवर्ष हासिल की गई। गौरतलब है कि 1980 से 1990 के दौरान औद्योगिक नीतियों की वजह से यह विकास दर में वृद्धि हुई और 1987 से 1997 के मध्य इसमें और वृद्धि पाई गई, जो करीब 3.5% रहा। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 1950 के आसपास देश की जनसंख्या का 50% गरीबी रेखा के नीचे रही। औद्योगिक विकास का ही परिणाम है कि 1974 में जनसंख्या का 35% ही गरीबी रेखा के नीचे था। यह रेल इकाइयों जैसे बोकारो आदि के विकास का काल था। 1980 से 1990 के मध्य जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के बावजूद गरीबी रेखा में और गिरावट आई। शिक्षा मानव के विकास और बौद्धिक क्षमता का परिचायक है। 1960 से 1977 के दौरान साक्षरता में 11% की वृद्धि पाई गई, जिसमें 1978 से 1995 में उल्लेखनीय उछाल आया और 25% से ऊपर चला गया। यह बढ़ते औद्योगिकरण का प्रभाव है। व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ उसके विकास की अन्य विधाओं का मार्ग प्रशस्त होता है। ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने से उद्योगों के लिए तकनीकी रूप से दक्ष श्रमिक प्राप्त होते हैं। इससे बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने का सूत्र मिलता है। हमारे देश में औद्योगिक जगत में धीमी गति से विस्तार गरीबी का एक कारण बताया गया है। जापान, अमेरिका जैसे देश इसके उदाहरण हैं। उद्योगों का तीव्र गति से विस्तार बेरोजगारी का हल है, साथ ही गांव का सरप्लस लेबर का उपयोग इसमें किया जा सकता है। औद्योगिकरण से शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। शहरीकरण विकास की ओर बढ़ने का संकेत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का आज भी योगदान करीब 18% है। यह अमेरिका में 2% से कम है। उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र के साथ सेवा क्षेत्र में बढ़ावा देने की जरूरत अभी भी है। इसके लिए विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में विकास को तेज करने की जरूरत है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नए उत्पादों एवं अनुसंधान का विकास कार्य होता है। हमारे देश में जेट्रोपा बीजों से बायोडीजल आदि पर अनुसंधान जारी है। बायोडीजल भविष्य में बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल की बढ़ती मांग और उनके घटते स्रोतों के लिहाज से आवश्यक है। औद्योगिकरण का ही परिणाम है कि हमने परमाणु विज्ञान, सैटेलाइट संचार, मिसाइल आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि औद्योगिकरण से शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के आसपास स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, बैंकिंग एवं स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित होती हैं। सहायक औद्योगिक इकाइयां एवं उद्योग जन्म लेते हैं। राउरकेला का घना जंगल अब उड़ीसा का आधुनिकतम शहर बन गया है। यहाँ तक कि हमारा जमशेदपुर भी साक्षी नामक गांव से आज भव्य रूप में औद्योगिकरण के दम पर विश्व फलक पर छाया है। आदित्यपुर औद्योगिक विकास समूह टाटा स्टील एवं इसकी आनुषंगिक इकाइयों के इर्द गिर्द बसा है, जो इस क्षेत्र के बढ़ते शहरीकरण का प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज के समय में किसी राष्ट्र की समृद्धि और उसकी सशक्तता का प्रमाण है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए आज अमेरिका और चीन जैसे राष्ट्रों में भी होड़ लगी हुई है और इस पर प्रभाव जमाने के लिए कूटनीतिक प्रपंच आदि रचे जाते हैं। यह सदियों पुरानी नीति भी रही है। विकासशील एवं अर्ध विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के लिए कच्चे माल तथा प्राथमिक उत्पादों में आपूर्तिकर्ता होते हैं। औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पाद एवं कच्चे माल की तुलना में महंगे होते हैं और इनकी मांग बढ़ी होती है। इससे विकसित एवं विकासशील देशों में एक मैप बनता है। भुगतान संतुलन जिस राष्ट्र के पक्ष में रहता है वह प्रभावशाली होता है। इसके लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। आज चीन कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका में है। उसके उत्पाद विश्व में अधिकांश देशों में छाए हुए हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकांश मोबाइल के उपकरण मेड इन चाइना हैं। सभी प्रकार के विकास के लिए पूंजी एक बड़ा कारक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी एक कारक है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन अधिशेष कम है, साथ ही इसका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण भी कठिन है। बृहत उद्योगों में अधिशेष काफी अधिक होता है। बाह्य और आंतरिक अर्थव्यवस्था का उपयोग कर औद्योगिक लाभ को बढ़ाया जा सकता है। इनका लाभांश विकास एवं विस्तार के लिए पुनः इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार औद्योगिकरण पूंजी निर्माण में मदद करता है। औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन किया जा सकता है। हम चूंकि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध हैं, लेकिन पूंजी और तकनीकी कमी इनके दोहन और संवर्धन में यदा कदा आड़े आती है। इतिहास बताता है कि ब्रिटिश भारत में देश की संपदा का दोहन किया गया और भारत को उनके उत्पाद का बाजार समझा गया। इस प्रक्रिया में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में वृद्धि हुई। आर्थिक विकास के लिए उद्योग प्रभावी कारक के रूप में देखे जाते हैं। आधुनिक तकनीक श्रम विभाजन और वैज्ञानिक प्रबंधन से अर्थव्यवस्था की गति तीव्र की जा सकती है। इससे उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ेंगे और पूंजी निर्माण और अर्थव्यवस्था का विकास होगा। औद्योगिकरण राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को बढ़ाता है। विकसित देशों में अर्थव्यवस्था के विकास ने इसे स्पष्ट किया है कि औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय के स्तर में निकट का संबंध है। भारत में वर्ष 2000-2001 में उद्योगों का GDP में हिस्सा करीब 28% था तथा प्रति व्यक्ति आय 16,486 रुपए थी। वहीं जापान में GDP में यह हिस्सा 36% रहा एवं प्रति व्यक्ति आय $36,000 के आसपास थी। विकास के सभी पैमाने व्यक्ति के विकास से संबंधित हैं। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत में 1960 से 90 के दरमियान जीवन काल में वृद्धि और औसत रूप से यह 43 वर्ष से 52 वर्ष पाई गई, जो इन वर्षों में 21% की बड़ी वृद्धि दिखलाती है। 1980 से 95 के दौरान यह जीवन काल 62 वर्ष की ऊंचाई को हासिल करने में सफल रहा, जो इन 15 वर्षों में 19% वृद्धि को दर्शाता है। इसी के साथ शिशु मृत्यु दर में भी परिवर्तन आए। 1960 से 1995 के बीच में यह दर 25% की दर से घटी। 1980 से 1995 में 45% की दर से इसमें कमी आई। कहने का तात्पर्य कि औद्योगिकरण राष्ट्र के विकास से उसके नागरिकों को ओवरऑल ग्रोथ को प्रभावित करता है, अर्थात विकास की धुरी के रूप में कार्य करता है।
1: पूर्व प्रसारित वार्ता अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। विषय था औद्योगिक प्रगति राष्ट्रीय विकास की धुरी। जानकारी दे रहे थे नागेंद्र शर्मा।

श्रमिक श्रोताओं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। एक तरफ मुद्रा लोन योजना के जरिए एमएसएमई सेक्टर के कारोबारियों को 10 लाख तक का निवेश बिजनेस लोन बिना कुछ गिरवी रखे दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज में उन तबकों के लिए विशेष बिजनेस लोन योजना शुरू की गई है जो लोग बिजनेस बढ़ाने में खुद से सक्षम नहीं है। दोस्तों, देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया लोन योजना चलाई जा रही है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लाभार्थी श्रेणियों के कारोबारियों को एक नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बिजनेस लोन दिया जाता है। श्रमिक साथियों, हम आपको ये बता दें कि स्टैंड अप इंडिया लोन का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए है। दोस्तों, यदि दो लोग मिलकर स्टैंड अप इंडिया लोन लेना चाहते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला होनी चाहिए और कारोबार में उनकी हिस्सेदारी 51% की होनी जरूरी है। इन जानकारियों के बाद आयुष्यताओं शाम को संगीत में बनाते हुए आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में अभी आप रंग फिल्म के इस गीत को सुन रहे थे। गीत लिखा था सुरेंद्र साथी ने और संगीत नदीम श्रवण का था। और दोस्तों, इस गीत के साथ ही अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब दीजिए अपनी दोस्त अंशु को अनुमति। नमस्कार।

0: कल कारखाने यथा श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कार्यक्रम आप आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार बुलेटिन सुनिएगा, बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें PMEGP 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, PMS पोर्टल, MSME ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, MSME टेस्टिंग पोर्टल और MSME आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे

0: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हुए हैं। हमारे केंद्र से सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: झारखंड के लोकगीतों के कार्यक्रम में मैं कृष्णा कावेरी आज आप सबके साथ हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा जोहार। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए उड़ाओ लोकगीत। कलाकार हैं जॉन पीटर एक्का एवं साथी।

0: श्रोताओं, इसके साथ ही झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर से आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। शाम के 6:20 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलेन डीएमके दलेन सह स्वीय नववर्षीयं गठबंधनं समाप्तम्। प्रसिद्धः तमिल चलचित्र अभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य चेन्नय्यां पञ्चत्वे विलीनः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आकाशवाण्याः मन की बात इति जनप्रिय मासिक कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः सह स्वीयं मनोगतं विनिमयीकरिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो अवदत् यत् ट्रंप प्रशासनं भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिक सहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु, फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मिस्र देशः ईरान देशेन सह अंतिमे जी समूहस्य द्वंद्वे एकम एकम इत्यंकांतरालेन समतावाप्य प्रथमतया फीफा विश्व कप स्पर्धायाः नॉकआउट इत्येतस्मिन् चरणे प्रविष्टः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य राजधान्यां विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। सामाजिक अन्तर्जालीय प्रेषिते संदेशे श्रीमोदिना विमानपत्तने सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन कृत भव्य स्वागतस्य भूरि भूरि प्रशंसा विहिता। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सेशेल्स देशः हिन्द महासागरे भारतस्य एकः सामुद्रिक सहयोगी दृढः मित्रदेशश्च वर्तते। मोदी अवोचत् यत् सः अस्याः यात्रायाः माध्यमेन उभयोर्देशयोः दीर्घकालीन सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं नागरिककल्याणाय सहयोगं वर्धयितुं संवादं प्रति आशान्वितो विद्यते। अनेन सहैव तेन विमानपत्तने भारतीय प्रवासी जनसमूहाय अपि हार्दिकं स्वागतार्थं धन्यता वचांसि ज्ञापितानि। गदितं च यत् भारतीय प्रवासीभिः यथा स्वसंस्कृतिः संरक्षिता सा श्लाघनीया वर्तते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य ऐतिहासिक 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य मुख्य अतिथिः भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलं डीएमके इत्यनेन सह नववर्षीयं गठबंधनं समापितवान्। दलस्य सचिवः वाइको वर्यः अद्य चेन्नई नगरे सामान्य परिषदः सभायाः नेतृत्वं कृतवान्। अपि च सभायां गठबंधनात् बहिर्गन्तुं सामान्यः प्रस्तावः स्वीकृतः। अवधेयं च यत् एमडीएमके दलं 17,000+ वर्षे डीएमके इत्यस्य नेतृत्वे जाते धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील संघटने सम्मिलितः आसीत्। प्रख्यातः तमिल चलचित्राभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य प्रातःकाले चेन्नई नगरे दिवंगतः। सः 73 वर्षीयः आसीत्। प्रख्यातः चलचित्र निर्माता भाग्यराजः चित्ताकर्षक चित्रकथायाः विनोदपूर्ण संवादानां च कृते प्रसिद्धः आसीत्, येन सः तमिल चलचित्र जगति अद्वितीयं स्थानम् अवाप्नोत्। तेन 25+ चलचित्राणि निर्देशितानि। प्रायः 75 चलचित्रेषु अभिनयं च अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः सुप्रसिद्धस्य चलचित्र निर्मातुः अभिनेतुः चलचित्र कथालेखकस्य च थिरु के भाग्यराजस्य निधने शोकं प्रकटितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

संस्कृत समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि जगत।

श्रोताओं, सबसे पहले आपको आज के मुख्य आकर्षण से अवगत करवा देते हैं। आज की भेंटवार्ता में आप सुनेंगे कृत्रिम जैविक खाद तैयार करने की विधि और लाभ के विषय में। भेंटवार्ताकार होंगे गोंदरा मार्डी। श्रोताओं, इसके साथ ही आज चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत योजना की जानकारी के बारे में। साथ ही बकरी पालन करने वाले भाई बहनों के लिए भी हम बात करेंगे बकरी की उन्नत किस्में और बरसात के पूर्व उनके टीकाकरण के विषय में। किसान भाई बहनों, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके साथ साझा करेंगे। अगर समय रहा तो गीत संगीत से भी आप सबका मनोरंजन अवश्य ही करेंगे।

किसान भाई बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराती है। श्रोताओं, यह सुविधा देश भर के सूचीबद्ध और सरकारी अस्पतालों में मान्य है। नई जानकारी के अनुसार इस वर्ष यानी 2026 से पश्चिम बंगाल भी इस योजना का हिस्सा बन गया है, जिससे राज्य के करीब 1.43 करोड़ परिवारों को इसका सीधा लाभ भी मिल रहा है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना इस योजना में शामिल किया गया है। श्रोताओं, एक अच्छी बात ये है कि अब आयुष्मान योजना का कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी आयुष्मान ऐप या PMJY बेनिफिशियरी पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।

पालन एक बेहद लाभकारी व्यवसाय है, परंतु बरसात का मौसम आते ही बकरियों में कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। इस मौसम में नमी और उमस के कारण बैक्टीरिया और वायरस सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए बरसात से पहले और बरसात के दौरान बकरियों का पूर्ण टीकाकरण कराना बेहद जरूरी है। पीपीआर का टीका बारिश शुरू होने से पहले यानी मई से जून के महीने में लगवा देना चाहिए, इससे महामारी जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव होता है। श्रोताओं, बकरियों की नस्ल का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें दूध के लिए पाल रहे हैं या मांस के लिए। मांस के लिए बेहतरीन नस्लें हैं ब्लैक बंगाल, यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में पाई जाती है। राजस्थान, सिरोही राजस्थान की यह नस्ल तेजी से वजन बढ़ाने के लिए जानी जाती है। बर्बरी नस्ल की बकरी छोटे आकार की बेहद आकर्षक होती है। दूध और मांस दोनों के लिए जमुनापारी बकरी की सबसे बड़ी और खूबसूरत नस्ल है। यह रोजाना 2 से 3 लीटर तक दूध दे सकती है। पंजाब की बीटल नस्ल जमुनापारी जैसी ही होती है, लेकिन ये हर तरह के माहौल में ढल जाती है। बकरी पालन के व्यवसाय के लिए यह बहुत ही लोकप्रिय नस्ल है।

श्रोता कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बारिश के मौसम में मछली पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। श्रोताओं, बारिश का मौसम मछली पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान सही से तैयारी नहीं होने पर तालाब का पानी खराब हो सकता है, मछलियां बीमार हो सकती हैं या बाढ़ के कारण बह सकती हैं। किसान भाइयों, बारिश शुरू होने से पहले अपने मछली तालाब या पॉन्ड में ये मुख्य तैयारियां जरूर कर लेनी चाहिए। तालाब के चारों तरफ के बांध को इतना ऊंचा और मजबूत करें कि भारी बारिश में बाहर का पानी तालाब में न घुसे और न ही तालाब का पानी बाहर बहे। बांध की मिट्टी को बहने से रोकने के लिए उस पर दूब घास या कोई अन्य वनस्पति लगा दें। अगर बांध में कहीं चूहे के बिल या दरारे हों तो उन्हें मिट्टी और चूना से अच्छी तरह से बंद कर दें। पानी के आने जाने के रास्ते में महीन और मजबूत लोहे या नायलॉन की जाली जरूर लगवाएं, ताकि तालाब की कीमती मछलियां पानी के तेज बहाव के साथ बाहर नहीं जा सकें। किसान भाई बहनों, साथ ही पानी के रास्तों से कचरा, प्लास्टिक और सूखी पत्तियां साफ कर दें, ताकि पानी का निकास सही से हो सके।

0: किसान भाई बहनों, लीजिए अब सुनिए ये भेंट वार्ता। विषय है कृत्रिम जैविक खाद तैयार करने की विधि और लाभ। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर गोंदरा मार्डी और इनसे बातचीत कर रही हैं रश्मि रानी।
1: आप हैं श्री गोंदरा मार्डी, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र। इनसे हम जानकारी लेंगे कृत्रिम जैविक खाद तैयार करने की विधियों का और उससे लाभ क्या है। गोंदरा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे

0: खाद क्या है?
1: जैविक खाद जो प्रकृति में हमें मिलता है, जैसे पेड़ से, पौधा से, पशु से, जंतु से, उनका मैल के रूप में, उसको हम जैविक खाद कहते हैं। जैविक खाद के अंतर्गत केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट प्लस जीवाणु खाद आदि आते हैं।
0: अच्छा माडी साहब, प्रमुख जैविक खाद जैसे केचुआ खाद अच्छा माना जाता है, इसके बनाने की विधि क्या है?
1: किसान जो गोबर का प्रयोग करते हैं, हर एक के घर में गोबर होता है,
0: बिल्कुल,
1: और वो साल में एक बार प्रयोग करते हैं। मुख्यतः तो जो किसान धान का खेती करते हैं तो साल में एक बार उसको निकालते हैं, लेकिन एक साल होते होते ये गोबर जो है कभी कभी काफ़ी ज़्यादा सड़ा गला हो जाता है, या काफ़ी बार जो है गोइठा जैसा हो जाता है, तो उसका गुण नहीं रहता है।
0: अच्छा,
1: अगर अपने घर में जो गोबर खाद है उस खाद को किसान भाई अगर केचुआ खाद में परिवर्तित करके फसल में या खेत में डालते हैं तो बहुत फायदेमंद है।
0: अच्छा।
1: और केचुआ खाद बनाना बहुत आसान है। केचुआ खाद बनाने के लिए आपके पास सड़ा गला पदार्थ चाहिए, गोबर चाहिए। ऐसा देखा गया है कि 60:40, यानी कि 60 भाग पेड़ पौधा सड़ा गला चीज चाहिए और 40 भाग जो है हमको गोबर चाहिए।
0: अच्छा।
1: और इसमें अगर हम केचुआ के लिए खाना के रूप में देते हैं तो केचुआ हमको गोबर केचुआ खाद तैयार करके देता है। लेकिन केचुआ खाद बनाने के लिए कई एक विधियां हैं।
0: अच्छा।
1: उसमें से प्रमुख रूप से एक सतही विधि होता है, जो जमीन के सतह के ऊपर में हम डाल देते हैं। दूसरा गड्ढा विधि, यानी कि गड्ढा बना के हम करते हैं। गड्ढा विधि ज़्यादा प्रचलित है। गड्ढा का आकार जो है 3 फीट चौड़ाई, 3 फीट गहराई, लंबाई अपने जरूरत के हिसाब से। लेकिन इसको आप कोई छायादार स्थान में बनाइए, यानी कि पुआल का घर हो या जहाँ पे पानी और धूप नहीं आता हो। और जब हम बेड तैयार करते हैं, सबसे नीचे हम जो है फसल का डंठल, जैसे राहड़ का हो सकता है, मकई का हो सकता है, बैंगन, टमाटर, कोई भी फसल का अवशेष,
0: फसलों का डंठल,
1: डंठल
0: पत्तियां, क्या ताजी होनी चाहिए या सूखी?
1: ताजी नहीं, ये सूखी होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और उसको सबसे नीचे हम 2 से 2.5 इंच बिछावन के रूप में बिछाते हैं
0: जी।
1: इसके ऊपर में 1 फीट गोबर देते हैं।
0: अच्छा।
1: उसमें भी गोबर में जो है सड़ा गला पदार्थ अगर मिला हुआ रहता है तो काफी अच्छा है। 1 फीट के बाद हम 3-4 इंच मोटा जो है गोबर का, ताजा गोबर का, 15-20 दिन पुराना गोबर का घोल डाल देते हैं।
0: अच्छा।
1: इसके ऊपर में फिर और 1 फीट जो है हम गोबर और सड़ा गला पदार्थ डालते हैं। फिर हम जो है गोबर का 3-4 इंच घोल डालते हैं। इस तरह से 3 फीट का गड्ढा को पूरा भरते हैं। भरने के बाद उसको जूट के बोरी से हम ढक देते हैं। जूट के बोरी से इसलिए ढका जाता है कि उसके अंदर का नमी बरकरार रहे। वैसी जो बेड का जो तापमान है ये करीब 20 से 25 डिग्री होना चाहिए और उसमें आर्द्रता नमी जो है 60-70% होना चाहिए, जिसे केचुआ बहुत आसानी से उसमें खा सकता है, पाल सकता है, बढ़ सकता है। और एक चीज ध्यान देने की बात है, जब हम बेड का तैयार कर लिए, सप्ताह 10 दिन में एक बार हमको उसको पलटी कर देना चाहिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि केचुआ अपने से उसको उल्टा पलटी नहीं कर सकते, तो इसीलिए अगर उसमें अगर ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो ऐसा परिस्थिति में आप उसको चलाते रहेंगे तो केचुआ आसानी से खाते रहेगा।
0: अच्छा माड़ी साहब, ये जैविक खाद रासायनिक खाद से किस प्रकार से भिन्न है?
1: जैविक खाद जो कि हमको पशु पक्षी, पेड़ पौधा, सड़ा गला पदार्थ से मिलता है, और रासायनिक खाद जो कि कारखाना से मिलता है और रासायनिक विधि से तैयार होता है
0: जी।
1: और दोनों में काफी अंतर है। किसान भाई इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे जैविक खाद का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो खेत की जो नमी है वो बढ़ जाएगी
0: जी।
1: प्लस जो मिट्टी की संरचना है वो आपका बदल जाएगा
0: जी।
1: और उसमें जो उत्पाद आएगा उसमें कीट और बीमारी नहीं लगेगा, खेत में खरपतवार नहीं होगा। जैसे अगर आप पानी 10 दिन में पटवान कर रहे थे तो हो सके आपको 15 दिन के अंदर फिर पटवान करना पड़ेगा।
0: ये तो बहुत बड़ा फायदा है कि पानी भी कम

0: लगेगा, पानी बिल्कुल, कम उपयोग होगा,
1: यानी कि जमीन का उर्वरा शक्ति के साथ साथ जो है मिट्टी की संरचना को बदलाव देता है। इसमें और एक सबसे खासियत है, जैविक रूप से पैदा किया हुआ जो फल फूल सब्जी है, साग है, ये उसका खाने में स्वादिष्ट अलग ही है,
0: ज्यादा पोषक तत्व भी,
1: ज्यादा पोषक तत्व है,
0: हानियां भी कम है,
1: हानियां कम है
0: जी।
1: और जो बड़े बड़े शहरों में लोग काफी डिमांड है, लोग उसको चाहते हैं कि जैविक रूप से खेती किया हुआ उत्पाद हो, चूंकि
0: उनके सेहत के लिए भी,
1: सेहत के लिए काफी फायदा है।
0: बिल्कुल।
1: और ऐसा देखा जा रहा कि जो भी हम रासायनिक रूप से रासायनिक खाद का या कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे फसल में काफी सारे अवशेष बच जा रहा, जिसे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा
0: जी। अच्छा, ये जैविक खाद हम हर मौसम में बना सकते हैं?
1: बिल्कुल, जैविक खाद आप हर मौसम में, विशेषकर केचुआ खाद, हर एक मौसम में बना सकते हैं, क्योंकि इनके लिए तापमान जो है 20 से 25 डिग्री आइडल है, अनुकूल है, लेकिन इसको कम तापमान में भी आप तैयार कर सकते हैं। उस समय थोड़ा सा केचुआ खाद बनने का जो रफ्तार है थोड़ा कम होगा, लेकिन हम इसको सालों भर बना सकते हैं।
0: कितना केचुआ डालने पर हमें कितने महीने में कितना खाद मिल सकता है?
1: जैसे एक क्यूबिक मीटर, यानी कि एक मीटर बाय एक मीटर बाय एक मीटर, इतना बड़ा गोबर का अगर ढेर है, उसमें अगर हम 1000 केचुआ छोड़ देते हैं, तो ये 50 से 60 दिन में जो है पूरे को खाके तैयार कर देता है।
0: अच्छा।
1: और खाके तैयार करने के बाद इसका रूप जो है बिल्कुल जो चाय पत्ती की तरह हो जाएगा, बिल्कुल भुरभुरा हो जाएगा। बढ़ने के बाद इसका जो लक्षण है, इसमें आपको बिल्कुल महक नहीं आएगा, सड़ेगा नहीं, और बिल्कुल भूल भूरा है, और चाय की पत्ती की तरह का रंग का होगा।
0: अच्छा, ये जैविक खाद खेतों में किस समय डाला जाता है?
1: जैविक खाद हम फसल लगाने से पहले भी डाल सकते हैं।
0: अच्छा।
1: या फसल की कोड़ाई के समय या मिट्टी चढ़ाते समय हम इसको बहुत आसानी से,
0: जैसे आलू वगैरह में मिट्टी चढ़ता है तो उस समय जैविक खाद
1: बहुत ही उपयुक्त है, खासकर आलू जैसे फसल के लिए, क्योंकि ये मिट्टी को बैठने नहीं देता है।
0: अच्छा।
1: मिट्टी को बैठने नहीं देता है, उसमें आसानी से वायु संचार होता है, और मिट्टी में जो भी जो सूक्ष्म जीवाणु है उनका जो वृद्धि है, उनका जो गतिविधि है वो बढ़ जाता है, जिससे जमीन में जो पोषक तत्व है उसका उपलब्धता फसल आसानी से कर लेता है।
0: जी, आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि किसान जो है पारंपरिक रूप से जैविक रूप से ही खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ किसान ज्यादा लाभ कमाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि रासायनिक खाद से जो हम खेती कर रहे हैं उसका खेती का लागत जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसा परिस्थिति में किसान अगर जैविक खाद, विशेषकर केचुआ खाद तैयार करके अगर अपना खेती करते हैं, तो उनका जो खेती में जो लागत बढ़ रहा वो कम हो जाएगा, और उत्पाद का दाम भी उनको अच्छा मिलेगा, तो उनको काफी फायदा होगा।
0: बिल्कुल। कृत्रिम जैविक खाद तैयार करने की क्या विधि है और उसके क्या लाभ हैं, इस विषय पर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। माड़ी साहब, आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृत्रिम जैविक खाद तैयार करने की विधि और लाभ, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गोंद्रा मार्डी, और इनसे बातचीत कर रही थी रश्मि।

किसान भाई बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है और ये क्यों जरूरी है। श्रोताओं, आज के समय में कृषि की एक ऐसी क्रांतिकारी पद्धति है जो पूरी तरह से प्रकृति के नियमों पर आधारित है। इसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। किसान भाई बहनों, प्राकृतिक खेती बिना किसी रासायनिक खाद और कीटनाशक के खेती करना है। इसमें बाजार से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पद्धति में जमीन की उर्वरता बढ़ाने और पौधों को पोषण देने के लिए केवल प्राकृतिक घटकों जैसे गाय के गोबर, गोमूत्र और वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। यह जैविक

खेती से भी एक कदम आगे है, क्योंकि इसमें केचुआ खाद या बाहर से खरीदी गई जैविक खाद की भी जरूरत नहीं पड़ती है। श्रोताओं, आज के समय में रासायनिक खेती के कारण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है। किसान भाई बहनों, रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों के कारण आज अनाज, सब्जियां और फलों में जहर घुल चुका है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। श्रोताओं, प्राकृतिक खेती से शुद्ध और पौष्टिक पैदावार मिलता है, साथ ही लागत में भारी कमी यानी शून्य बजट में यह प्राकृतिक खेती होती है। किसानों को महंगे रासायनिक खाद और कीटनाशक बाजार से नहीं खरीदने पड़ते हैं, जिससे खेती की लागत शून्य हो जाती है और किसान कर्ज के जाल से भी बच जाते हैं।

किसान भाई बहनों, अब थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं पद्मा झा। गीत के बोल हैं, मेघ ऐल कारी लय बूंदन भारी।

किसान भाई बहनों, अब साप्ताहिक मौसम पर आधारित फसल सलाह। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाई बहनों की धान की पौसाला लग गई हो, वे बकानी रोग के लक्षण पाए जाने पर कार्बेंडिजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों में छिड़काव करें। धान के पौधों का रंग यदि पीला पड़ गया है तो यह लौह तत्व की कमी को दर्शाता है। इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट प्लस 0.25% चूने के घोल का छिड़काव अवश्य करें।

किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण हो रहा था इसका आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में हमारे रांची केंद्र से होगा। आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन सुनिएगा शाम 7:00। 7:10 पर होगा जिले में आजकल।

रांची केंद्र के प्रसारण के बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा बांग्ला प्रेमी श्रोताओं के लिए बांग्ला कार्यक्रम, और इसके ठीक बाद 7:45 पर अंग्रेजी कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा आकाशवाणी जमशेदपुर से फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे से। राष्ट्रीय प्रसारण के आज के कार्यक्रमों में हिंदी समाचार बुलेटिन समाचार संध्या 8:45 पर, रात 9 बजे अंग्रेजी समाचार बुलेटिन न्यूज एट 9। समसामयिक मुद्दों पर अंग्रेजी में इंटरव्यू का प्रोग्राम स्पॉटलाइट सुनिएगा रात 9:15 पर। विज्ञान भारती, ये राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका प्रसारित होगी रात 9:30 पर, और रात 10 बजे से संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम सुनिएगा। राष्ट्रीय प्रसारण के ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे। कुछ ही पलों में आकाशवाणी रांची से प्रसारित कार्यक्रम सुनिएगा। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रामगढ़ में युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर दिया प्रशिक्षण। डिजिटल क्रिएटर्स से मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने की अपील। राजधानी रांची सहित राज्यभर में भाईचारगी के साथ निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, देशभक्ति और अमन का दिया संदेश। और राजधानी रांची सहित राज्यभर में कल से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी खुराक देने का है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का सपना आर्थिक न्याय, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक सशक्त भारत का निर्माण करना था। श्री अठावले आज रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं को बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के छात्र कई देशों में शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं
1: और शिक्षा में हमें बहुत बड़ी प्रगति हम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में अपने अनेक स्टूडेंट जाते हैं। मेरे मंत्रालय का सोशल जस्टिस का एक ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है, उसमें 600-650 स्टूडेंट से स्टूडेंट के एप्लीकेशन मेरे पास आते हैं और अनेक स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए अमरीका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, अनेक देशों में वो मत शिक्षा के लिए जा रहे हैं।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि गैर भारतीय या नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे तुरंत BLO को लौटा दें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्टेट लेवल क्रिएटर्स मीट 2026 में ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े 70 डिजिटल क्रिएटर्स को SIR का महत्व समझाते हुए सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक सही जानकारी पहुंचाने को कहा, ताकि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम सूची से न छूटे और एक भी अपात्र व्यक्ति न जुड़े। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर आंशिक भरे इन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रतियां देंगे। एक BLO को लौटानी है और दूसरी पावती के रूप में रखनी है और फॉर्म जमा करने वाले सभी मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रकाशित होगा। जामताड़ा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार ने आज समाहरणालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी की जा रही है।
2: मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क उसमें है कि हाउस टू हाउस जो विजिट करेंगे हमारे BLO 30 से 2026 से 29-7-2026 तक हमारे BLO हर घर में जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म्स देंगे। इसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन को भी रेशनलाइज कर रहे हैं, जिसमें कुछ पोलिंग स्टेशन के बढ़ने की संभावना है।
0: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड कम्बाइंड प्रवेश परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 19 जुलाई की जगह 26 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो।

0: न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा रांची के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई पहल की जा रही है।
1: इस नए जमाने में पुराने अपने विधियों के द्वारा पुराने हमारे उसमें हम अपने लोगों की जरूरत कैसे पूरा करें, बड़ी संख्या जनसंख्या है उसको कैसे हम इसको करें ताकि हम शुद्ध भी खाएं और हमारा पेट भी भर जाए सबका।
0: राजधानी रांची में मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदायों ने ताजिया और अलम का जुलूस निकाला जिसमें मेन रोड सहित अन्य स्थानों से गमे हुसैन में हजारों अजादार शामिल हुए। जुलूस में लोगों ने मातम करते हुए इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की कुर्बानी को याद किया। वहीं एक ताजिया को फाइटर जेट के मॉडल में बनाकर उसमें सैनिक वेश में युवकों को बिठाकर देशभक्ति और अमन का संदेश दिया गया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल से 3 दिनों तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य भर के 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित है। रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि रांची में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने के लिए 3,893 बूथ बनाए गए हैं। श्री कुमार ने रांची सदर अस्पताल में 15 प्रचार प्रसार वाहनों को रवाना करते हुए कहा कि लोगों को पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
2: मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि 2 साल के बाद हो रहा है जो पल्स पोलियो का कार्यक्रम है, 2 साल के गैप के बाद हो रहा है, क्योंकि अब उतनी जरूरत नहीं रही लेकिन अभी जरूरत महसूस की गई है कि नहीं 2 साल के बाद अभी होना जरूरी है, तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए सारे रथ रवाना किए गए।
0: देवघर में स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं।
3: याद रखें कि 2011 से कोई मामला हमारे भारत में नहीं आया है पोलियो का, तो हम लोग ये चाहेंगे कि कभी भी ये रिपीट ना हो, इसके लिए ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी बच्चों को दवा नहीं दी जाएगी, तो इतने मात्रा में जो दवा की व्यवस्था और पूरी सारी व्यवस्था की गई है बेकार हो जाएगी।
0: उधर पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 3,97,521 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में 2.25 लाख से अधिक बच्चों को खुराक दी जाएगी। हजारीबाग जिले के बरकटा थाना की पुलिस ने एक होटल के पास अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। बरही CDPO राधा प्रेम किशोर ने बताया कि ट्रक से 935 कार्टन शराब जब्त की गई है जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। पुलिस ट्रक चालक उत्तराखंड निवासी दलजीत सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मौसम विभाग ने झारखंड में 30 जून से मॉनसून के दोबारा सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान 30 जून और 1 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रामगढ़ में युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर दिया प्रशिक्षण। डिजिटल क्रिएटर्स से मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने की अपील। राजधानी रांची सहित राज्य भर में भाईचारगी के साथ निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, देशभक्ति और अमन का दिया संदेश। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का है लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: भारत से बाहर रहकर धनबाद समेत पूरे राज्य में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ जिले की पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की है। बीते गुरुवार को पुलिस ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र से गिरोह के सक्रिय सदस्य मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। धनबाद के ग्रामीण SP मोहम्मद सियाकूब ने बताया कि आने वाले दिनों में रेलवे टेंडर से जुड़े ठेकेदारों को प्रिंस खान गिरोह के नाम पर डराकर रंगदारी वसूलने की योजना बनाई जा रही थी।
2: पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच गए हैं, पहुंच के समय पर घेराबंदी करके वहां विधिवत प्रॉपर तरीके से रेड किया गया है। उस रेड में हमको 2 पिस्टल और 33 राउंड्स लाइव राउंड्स गोली बरामद हुआ है। तो साथ में इनका जो यूज हुआ मोबाइल सैमसंग का मोबाइल वो भी मिला है। तो ये चार आइटम सीज करते हुए इनको विधिवत वहां पर अरेस्ट किए गए हैं और पूछताछ करने के क्रम में का जो सूचना है उसको ये एक्सेप्ट किए हैं। एक्सेप्ट करते हुए मतलब प्रतारोपी बयान दिए और पूछताछ के क्रम में ये भी पता चला है तो ये जो इकट्ठा कर रहे हैं ये जो आर्म्स वगैरह है ये अफजल अमन जो है प्रिंस खान संगठित अपराध गिरोह का एक सक्रिय सदस्य है, उनके इशारे पर ये सब काम कर रहे हैं।
1: धनबाद में इन दिनों आस्था के पर्व भोक्ता पूजा के विभिन्न रंग देखने को मिल रहे। कल निर्जला एकादशी के अवसर पर पूर्वी टुंडी प्रखंड के बामनाबाद गांव में 4 दिवसीय भोक्ता पूजा का समापन हुआ। हजारों लोग इस पूजा में जुटे और अपने शरीर में कील और कांटे आदि चुभोकर भगवान की आराधना करते हुए अपने संयम का परिचय दिया। मुख्य पुजारी मनोज बनर्जी ने बताया कि बाबा धर्मराज के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है।
3: पहले यहाँ मेला उला बहुत लगता था, राजा आके यहाँ मेला में बैठे मेला का सब परिचालना कराता था। देखिए ये हमारा दादू जी पूजा करके गया है, उसके बाद बाबू जी, अभी हाँ मनोज बनर्जी अभी पूजा कर रहा है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर धनबाद भाजपा जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में बीते दिनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है।
4: जो जन सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम हुए अकल्पनीय और अद्वितीय है। विकास और विरासत के संगम को हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल रहा, जहां 2014 के पहले भ्रष्टाचार चरम पे पॉलिसी पैरालिसिस थी, देश की जनता निराश थी कि इस देश में कुछ नहीं होने। ऐसे समय में देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश में एक साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लेकर दुनिया को बताने का काम किया कि भारत में वो क्षमता है जो दुनिया में किसी के पास क्षमता है।
1: बहरहाल इन कार्यक्रमों के आयोजन से भाजपा मुख्य रूप से प्रबुद्ध नागरिकों और शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को पार्टी से गहरे तौर पर जोड़ने की कोशिश में है, ताकि आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिल सके। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:15 हुए हैं। हमारे केंद्र से अब सुनिए बांग्ला प्रेमी श्रोताओं के लिए बांग्ला कार्यक्रम।

0: ये था बांग्ला प्रीमियर श्रोताओं के लिए बांग्ला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 7:45 होने को है, हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

आप सुन रहे थे अंग्रेजी कार्यक्रम। रात के 8 बजे हैं, प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का यह पहला गीत रेस फिल्म से आपने सुना, आतिफ असलम और साथियों की आवाज़ों में। समीर की शब्द रचना थी, संगीत प्रीतम का था।

0: मर्डर टू, इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद इरफान और साथियों की आवाज़ों में। आदित्य कुमार ने इस गीत को लिखा था, धुन बनाई थी मिथुन ने। फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी है फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, लेकिन पहले कुछ संदेश।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो डॉक्टर,
0: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
4: हेलो डॉक्टर,
0: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अपने रेडियो और मोबाइल सेट पे आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस समय लीजिए सुनिए इसी कार्यक्रम का अगला गीत।

आदर्श श्रीवास्तव के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, अभिजीत भट्टाचार्य और साथियों का गाया हुआ। फिल्म चलते चलते के लिए इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने।

संतोष आनंद की शब्द रचना आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर क्रांति फिल्म से। स्वर था लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों का।

0: आनंद बख्शी का लिखा गीत आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर लता मंगेशकर और साथियों के सुरों में। फिल्म थी राम लखन। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर। इस समय रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय प्रसारण के कार्यक्रम सुनिएगा। इसमें पहले हिंदी समाचार बुलेटिन समाचार संध्या होगा और ठीक इसके बाद अंग्रेजी समाचार बुलेटिन न्यूज एट 9। प्रसारण हेतु कीजिए कुछ एक पलों की प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
3: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today.

0: the business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
4: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles, and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या

0: जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को बिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
0: उसके चारों तरफ ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन।
1: जी,
0: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कोश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है।
1: जी,
0: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेस्टली और कोई रिस्क लूं तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे

0: जाए तो वो सबसे अच्छी जगह है, ड्रॉप हो गया। कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेकर काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा कर देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और डेथ हो गई, तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंटवार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे सांस सांस इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबेल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
4: जी,
3: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
4: जी,
3: मोबाइल भी नहीं था और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पर
4: जी।
3: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन

0: अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में हवा की

0: ठीक है। तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
1: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ। उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
2: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने एआई क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम FTTH ब्रॉडबैंड समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
3: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
4: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
3: जी,
4: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माय दिस थिंग एक्चुअली।
3: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये कि आधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तरा

अधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरू प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक

0: यह था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by मुस्तफा हुसैन। With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS

0: साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीन लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियंड्रो ट्रोसार्ड के दो गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation and demoralizing public sentiment. The ministry said that it was in direct reference to this specific and mischievous narrative that the defense minister made the statement in question. Union Minister for Electronics and IT Ashwini Vaishnav and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath laid the foundation.